0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मथंगदा असेम बिमला देवी ने सप्पा नोंगथुम बम डबल ओ सिंह ने सीडिंग बा मदम शेमा दाबीसी।

ओक्रम राजेंद्र सिंह मियांगिना राजेंद्र ओक्रम ख्वाई नगमापाल दा ओक्रम जुगे सोरमदी ओक्रम ओंबी नयनी देवी अनिगी मचानीपा अहल ओइना इंग कुमजाली सिंह मचामापल निपुनी थोईगी जुलाई कुनहुंदोईदा ताइबुंदे खोंदा रखी मचिन मनाव पुगविनबा निपा तरुक अमदी नुपी मंगानी अदुगा ममा अतोपा अमगी मचाना मापल नि पुन्न मचिन मनाव कुन्ने।

थाउरम सनुक्तना तहंजरी बासी आकाशवाणी फल्की एफएम संगाई चैनल दिगिनी हाउसिक ताबिरसी अतोप मंगलदा फोर रियल्म्स ऑफ आर्ट थाउरम से एससीईआरटी

मखा मठल की थोड़म कया संदोकतुना तहन जरिबासी आकाशवाणी फलगे एफएम संगाई चैनल दिगिनी हाउसिक पुंगफम सिदा अरुम की दमक पूर्ण लागचरी गुड मॉर्निंग मणिपुर की थोड़म थोड़म मसे की दमक अरुम की खोंगलोई लौरेंबम चंदनाना थोड़म दाबी रिबा ख्वाई खेबिकपु तराम नोकचो बगलुइनना खुरुम जरी थोड़म मसेदा अरुम न खुइदा बिबा मणिपुरी फिल्म नत्रगा मतमिसे सिंह एकोई की थमजरिबा मोबाइल नंबर 9863102016 नंबर से दा SMS नत्रगा WhatsApp Messenger दा खनबिरकबा यारगनी थावरों में से की दमक थमजरिबा एकोई की मोबाइल नंबर अमुका हन्ना निंगसिंजरी 9863102016 अरुम के SMS ngai zari.

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मथंदा राधा रानी फिल्म सिदगी दिनेश मदी पुष्परानी अनिपुन सकमिनबा नरेंद्र चिंगांग बमने सेरिंगबा जियांगम कामयमदी नरेंद्र चिंगांग बमना सेरांग बै सेकन बेरपा एसएमएस मा लोगचरे एसएमएस थाबिरक्ली बमी युइना उतलौ साजोरदगी सनाहल राहुल मदी लेसेम बने इसे इसे लाइफ द लेबिरिबा अमदी रेडियो बु थवा याउना ताबिरिबा पुमनमका तामिना चके हाइदना थाबिरक बनी सुइदना ताबियु कुदल दमजरी तामिनासी।

हाउसिक लैंड डॉक्टरी गीत गीत खुदोल के अहन बदा ताबिरसी श्रेया गोशाला मदी अजी गो काफले अनिपुन सबिनबा गीतमा

0: खोली न तरने पानी दा
1: ता थो ले या
2: इमा इमा बुआ
1: अस हकथे का रे ब्रने नंग बुआ
2: होय खोतेन गे वाला पा खरा ले बला को नी इमा बुआ अस इमा बु थे न बे या नुहाय रे
1: ने उदब सु पुई रे कम दौरिया हां नुहाय री दना
2: हिंगी बहाय दुनी दा इमा बु इमा बुआ कैथेन सिदाई दा लेरी बा पाक सिदा मे हकता फमसिना मफम सुवा सु हांगे लाओ इमा बु ला
1: कोई बदि यात्री को सुनुपादो सानुपो सिङाई रंगदोरिबनिन हे
2: सुनुपादि
1: हेरा इपानुपागि नेमसुदो
2: इमाई पेमा
1: सानुपो से नोमगिया मनी दिलै दयाद्रे निङाई ग चक्रीगा इस खामला गम पोंतिगु
2: फमसिमाबो इमाबोपु नपानुपागि दलैरिरो
1: माकि ने क्वाटर दलै सेसे लेबावै नानसे सासेसे
2: हिमायम हाउनि आ पाबुंदि इमाबोकि युमद चलुरे हाय थेंना रते हायना
1: ए इपाम द चत्ते द इक्वागी सिदने मतम खजिकतं लेबियो हायबसि कुइरबन आ तांदुम सारे हायदनने सिदा दुम लाब
2: लेबो बुनुवाय ब्रो
1: ए अहिना नुवाय तब लेते द इमाबोकी पुनिंग वाखंदने अवाब हायबसि चंगज फम खक पिदि ऐदि मफम खुदिं मत चप जाना दुम नुवाय बगमि अवाब मे सखंदि ए
2: अदो इमाबो आद इमाबो उदबदो कयाम नुवायते पाबुंग दुसु अंगाव बग पांख ओइरे चागनि थकनि अमत खंग्र मान इमाबो कि खोंगुल लिरुसिदा हायले
1: आसिसे सिसाउसे कुइन फमगुमसि नंसु थेंखिनि लमलापि
2: पाबुंग द करी हायु गे
1: त थोले होगलसि चसिसे
2: नाय खु इमाबो
1: त थोले नंसि इमाबो ने यानिंग त्रेबो
2: ऐसे पाबुंग वाक नाते ऐ इमाबो यामु इमाबो की खनबद या
1: इमाबो की खलुनो अवाब मस खे हायरेदना नंग थेंखी ऐ सुनी
2: अदो पाबुंग उनबियो इमाबो पाबुंग उनारे खलब
1: कहीं उनदनी लुहोंब बातों तौरो हायो
2: निने मतौलेबी मामू कालीन जाऊ इमाबु
1: ताद्रीब्रा एनादना अंगी पंख ओरबदेदा पासीदिया
2: खी नाद इमाबु
1: नीदी ओंथन ला खनखरे हेमा
2: इमाबुसु अचुब
1: गांगदेना ओ अमु फमधरगे था थोके थोसु हायु हाय इमाबु तारगे करीनो हाँ अरब गांगे करीनोब
2: इमाबोकु अवाब मस खे हाईदाइने
1: होने हाईने
2: करी पीनो इमाबोटे नोन नोन पी सिंथब है नोथांग लिंग असांब मईने इमाबो की थमोद तार उदबी इमाबोन कपलीब थमोद लोसीब हटनाबद माइथोंद मोमो नोपनी नत्रो
1: तथो
2: पीदूम तैथोजे इमाबो
1: नाइबगे पीने कौपे
2: अयानी इमाबु इमाबु इमाबु नुंगाई करीनो लोटू थमले नत्रने इमाबु ऐपु लालब्रो
1: नंगु लाली हायरपति नंगे पीदुद इमाबु ने इरान लंशित बथुओइद्रने पीदो तैथो तथोले इमाबु वहा मत हाई अगने
2: हनरसमाबो
1: तथोले पुसी चमीनब याब खोलो चमीनब सब खोचब खुनाई मोयबी मरी हाई थाजबीद युफम होने लागल लाबू ईश्वर लंसीब या थाजबद नमथाक तौबदी तवैदब तबक्री नुंसीबदी नुंसीदुना दुम लैगदो नुंसीब हाइबसिदी हेन हेन नुंसीगदो बनिदे अवांगी अवांगी चाको लेंदना दुम ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯗꯅ ꯃꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤꯅꯦ꯫ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯂꯧꯁꯟꯕꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯅꯪ ꯈꯪꯏꯗꯅ, ꯏꯃꯥꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯕꯅꯦ꯫
2: ꯏꯃꯥꯕꯨ, ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯩ
1: ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯐꯅ ꯀꯟꯅ ꯈꯥꯡꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯧ ꯇꯝꯂꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯅꯤꯗ
2: ꯏꯃꯥꯕꯨ, ꯐꯥꯕꯨꯡꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯦ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯈꯟꯊꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯥꯕꯨ,
1: ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯤꯅꯦ, ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯟꯕꯅꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯏꯃꯥꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦꯅꯦ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯂꯕ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ, ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ,
2: ꯏꯃꯥꯕꯨ
1: ꯉꯟꯅꯁꯤ ꯊꯦꯡꯂꯅꯤ, ꯇꯠꯊꯣꯛꯂꯩ ꯆꯠꯁꯤ
2: ꯏꯃꯥꯕꯨ, ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯃꯥꯕꯨ,
1: ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ, ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯨꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯕ ꯅꯄꯨꯔꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯗꯨꯕꯣ,
2: ꯏꯃꯥꯕꯨꯒꯤꯗꯤ
1: ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ,
2: ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦ,
1: ꯏꯃꯥꯕꯨꯒꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯥꯏꯍꯟꯒꯦ ꯈꯟꯒꯅꯨ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥ, ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯪꯖꯔꯨꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯄꯤꯔꯕꯒꯦꯅꯦ, ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ, ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯝꯂꯕꯅꯤꯅꯦ, ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕꯁꯦ, ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯅꯥꯏ, ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯉꯥꯎꯆꯠꯅꯔꯛꯏ, ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤꯕꯣ,
2: ꯏꯃꯥꯕꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ, ꯄꯥꯕꯨꯡꯕꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯥꯕꯣ, ꯁꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯏꯃꯥꯕꯣ,
1: ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯝꯒꯅꯤ, ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦꯅꯦ, ꯑꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦꯅꯦ, ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤꯅꯦ, ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯂꯦꯞꯂꯦ, ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯃꯥꯕꯨꯒꯤ ꯑꯔꯦꯞꯄꯅꯦ,
2: ꯏꯃꯥꯕꯨ.

शुक्रिया मैरीना। नमस्कार, स्वागत है आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल पर। और अभी दोपहर के कार्यक्रम में आपके लिए रहेगा कार्यक्रम गीतमाला, और गीतमाला के अंतर्गत आज होगा सदाबहार गीतों का बहार, और मैं हूं आप सबकी दोस्त वैलेंटीना।

दोस्तों, आपने कभी देखा है उन सूरज की रोशनी के चकाचौंध तले एक फूल खिल रहा होता है और उसे देखकर हमें ये महसूस होता है कि वाह वाह, ये फूल कितना सुंदर है, कितना मनभावन है। और वैसे ही सुंदर बनाता है उस पल को, वैसे ही आज के आपके गीतमाला सुंदर बना रही है इस आधे घंटे के इस सुनहरे पल को। सदाबहार गीत कार्यक्रम में आपके लिए प्रस्तुत है ये पहला नगमा, ये पहला सदाबहार गीत फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। और इस गीत में जो गायक हैं वो है अनुराधा पौडवाल, जिसने 37th फिल्मफेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में जीते हैं। और उनके साथ हैं कुमार सानू, गीत के लेखन फैज अनवर द्वारा और संगीत में नदीम श्रवण।

दोस्तों, वक्त का तकाजा बड़ी अहमियत रखता है उन हम सफरों को, उनके हम सफर के लिए चलने की उनकी राह के लिए, पाने की उनकी मंजिल के लिए। अगला हमारा सदाबहार गीत है उदित नारायण और अलका याग्निक की गायन में। गीत के लेखक मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आनंद मिलंद। फिल्म का नाम है 1988 में आई हुई फिल्म कयामत से कयामत तक।

नमस्कार दोस्तों, ये कुछ ऐसे गीत हैं उनके लिए जिनके लिए एक गीत सुनने के बाद मन भर ही नहीं पाता, संभाल ही नहीं पाते हैं, अपनी यादों के लहर में खो जाते हैं। किसी की याद, किसी की दी हुई रंजिश याद आ जाती है। आइए सदाबहार गीत में हम सुनते हैं 1990 में आई हुई फिल्म आशिकी से। ये गीत है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत के लेखक रानी मलिक और संगीतकार नदीम श्रवण। ये फिल्म आई थी सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बैनर।

और दोस्तों सदाबहार गीत में अगला ऐसा गीत है, उस गीत को सुनने के बाद जीवन को रास आता जैसा महसूस करते हैं, और वो गीत है मशहूर फिल्म साजन से अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और एसपी बालसुब्रमण्यम की गायन में, समीर के गीत, नदीम श्रवण के संगीत में बनी ये गीत है, और नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक से पुरस्कृत किया गया था इस फिल्म के लिए। आइए सुनते हैं माधुरी दीक्षित, सलमान खान और संजय दत्त की ये फिल्म के गीत।

हमारे सदाबहार गीत में हम अगले गीत की ओर प्रस्थान करते हैं और ये गीत है फिल्म 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया और इस फिल्म का नाम लेते ही हमें याद आती है वो मुस्कुराहट, वो चेहरा और नाम है भाग्यश्री। इस फिल्म की अभिनेत्री और उनके साथ नजर आए थे हमारे अभिनेता सलमान खान, उनकी जोड़ी पर ये दमदार फिल्म थी और काफ़ी सराहना गया था इस फिल्म के गीत को। दिल दीवाना काफ़ी मशहूर गीत है, देव कोहली की लेखन में ये गीत बनी है और संगीत राम लक्ष्मण द्वारा, आवाज़ इस गीत में लता मंगेशकर की है।

और दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि सलामत रहे हमारी दोस्ती, यूं ही बनी रहे और यूं ही चलती रहे हमारी गीतमाला की इस सफ़र। और हमें दीजिएगा इजाज़त आज के लिए, अभी के लिए। नमस्कार।

0: ꯎꯖꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯀꯨꯔꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯛꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯖꯅꯅꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯨꯔꯤꯔꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯦꯡꯃꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1940ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯨꯔꯤꯔꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯂꯦꯠ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯈꯤꯕ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨ 1980ꯇ ꯑꯣꯏꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 40ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯃꯦꯝꯆꯣꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟ ꯅꯦꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯨꯔꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯖꯥꯇꯤꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯣꯜꯕꯨ ꯄꯨꯈꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯔꯤꯔꯣꯜꯕꯨ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯒ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯔꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯃꯜ ꯑꯉꯥꯡꯍꯜ ꯗꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟ ꯃꯌꯨꯙꯕꯖꯅꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯤꯕ ꯃꯁꯛ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯔꯤꯔꯣꯜꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯕꯨ ꯃꯅꯥꯠꯄꯨ ꯄꯨꯈꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯣꯜꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯔꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯃꯜꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ 1999 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯆꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗꯩꯗ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯠꯇꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯔꯤꯅꯥ ꯁꯥ ꯄꯦꯔꯠꯀꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯁꯨ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯖꯥꯇꯤꯕꯨ ꯀꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯔꯤꯔꯣꯜꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥ 1999 ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯗꯝ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯂꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯗꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯖꯥ ꯐꯣꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯖꯥꯗꯨ 1997 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯨꯔꯤꯔꯣꯜ ꯄꯥꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯄꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯌꯥꯑꯣꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯍꯨꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯣꯡꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯏꯁꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯩꯅꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯎꯔꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯃꯛꯇ ꯁꯤꯡꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯒ
1: ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯔꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯨꯒ ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯔꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯄꯨ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯕꯒꯤ ମତୁଙ୍ଗଦା ହାଇରିବୋ 1990 ମତୁଙ୍ଗଦା ଥୁରେଇବୋ ରାଇଟର ସିଂସେ କବି ସିଂସେ ମପୁଙ୍ଗ ଓଇନା ମକୋଇନା ସଗଲେଇବୋ ମକୋଇନା ଉରିବୋ ମଣିପୁରଗି ମସକସିଗା ସମଜନନରକୋ ମତମ ସ୍ତେସା ଆଇକୋଇନା ଏମନିଏସିଆ ମୋଇନା ମିସିଂ ଲିଙ୍କମ ଓଇନା ख्रिस्तगी तरह निपान त्रांपन सूब चाही चागे मतम दुना गेप का मतम गेबा की पोट से एकोई हानगे लेजरंब ख्रिस्तगी तरह तरह सूब चाही चा फाउद लेरमेबा मणिपुर की शक्तम अदु की पोटुगा कुन सूब चाही चागी अथेंग बसरु कुनवा थुई सूब सप्ताप्ती लाम दाई गे मतम से थुरे बु कवि सिंह सिगा ब्रीज तोरग येंग को मतम से सा एकोई से इशाबु मसक खंग आबा इशाबु इशान खंग नबाना यिंगजनबगी रुममम खक लोराबा हाइज बताए अदु कुम पुंफम मदा इचंगसल ए हाइना लोजई मसीगी सिम्टोम से ऐ खुनाइसदी मरफु द्रागी मतम हाइसिमक्तबु यामना हेना चरांगना ब मतम खंगेना ई थमजनिंगी पुन मनुसु हेना खंगबिरि दुनी मणिपुर स्टेटहुड पगी मतांग मधुगा लोइनना आइखोगी इन्सर्जेंसी की एहु मयाम लाखिबा महिरोइसिंगी लुप मयाम मसियाम कानदेदा चरांगना ब फिबम मयाम ददैदा मधुगुम फिबम जिंगदुब लाक्सनना ब अनहोनाबदा आइखोइना भारत लेंगा की सू तोान तोान मखल की लो मैम खक इम्प्लीमेंट तौरतना खुनाइसदेस्ताहा मिपुन सिबनाब मफखंगदना दुमायना मखुत तुंगुनरग तरंब थवाई मैम खक युत मैम खक मथवाई थाब की पोट से अखोई खुनाइद तोयन थोप खबर की हिदिंग लेगीबम खकतुदा लमदम से इरई चाहना लोन चौखल यादे अखोई की साहित्य चौखल यादे अखोई की इरेब कंब यादे है पुकमग लोना रोल्द खुद थर पोट से अपाब सिंह थमोदुदा मधु की पोट पारूबदेब की पोट सिंह फाहनबरा अपाब सिंह फाहनबरा है थमजनी मधु की मिजेंगे येग चथरपे अखोई की खुनाइस यूथ सिंह से तोान तोान मखल की डिसिप्लिन मोई खुद थादना अवांग मथा की मही तमदना लोक्षिंग ज्ञान से मालेम पुलम की तोान तोान मौम सिंह फोनरीब यूथ सिंह ज्ञान दुमकू तादना फंगब मिरोल अखोई लमसीदरबने लौजे पुनमक से खुनाई की खोचत स्टेज हजिश कम अखोई खनम तौप वखल खनदगुम तौम थोप इत तौदगुम अचौबू मचासु लेंगाकु प्रसाद पुलटना अखोई कौशिंगदों तुरल तौथमीनबी पोट चलि है खनजे की खलब पोट से महरों लोनजरूब याजब क्लासरूम यामगिद्रब सेमिस्टर की महरों लोनजब सिलेबसब टेक्सु रिप्रेजेंट तौरीब यूनिट मचाखिद्रब सैरें यामगिद्रब वरी मचाखक मधु की खुथांगदगी करिगुम एगी महरों से मरेबाक निंबगी वखलों से ममारोलब नुंसीबगी वखलों से मजातीब कनिंबगी वखलों से मधु कितांग ऐना इंजेक्ट तौबंगमबदी योहनबंगमबदी एगी मांगद लेरिबा अदुगुम ओजागुरु सिंह अदुगुम लाइवेक्रब कबी सिंह हौजिक हौजिक कन्ना खुद थारिब कबी सिंह मधुगुमबना इरिब पोट सिंह दोइन इंटरप्रिटेशन कितांग पिजरगा मोइबु कितांग ममित ममाय पांगनबंगम मरेबाक की वखलदु कितांग खानब ngammabdi ai ponam sil winamak shop to bungam godra ana khanjai engone am kan phawri bisi ai khui sidai sida mareibak ningbagi wakhal se mashibu ekoi ge yut sing se sta lengdana leirabo mayokna bo ponamak se ai loinamak lanthingna bungam godra singonda yam kan phawjobam khakni maramaduna ai khui ge tumduna leiriba मेकअप थोत्रीब सूगुब इहुल से कवि सिंहरमीब अब फोदोमीब पोट से रिमाइन तौमीन मधु की लाइन ऑफ थोत चंजनमीनबी लोनमी अफयम लाकद्रा खनजे महाराज कुमारी विनोदीनेरमीबदी मांग इसे मेयद कनाद सिनी फिरालसीबकानदेद तुम की मिरोल की आगाम खुम मोदेद अखोई लेरी हरपे पोट अदी अराम समरेंद्र अफाव ड्रमाटिस्ने की इसे मेयक मांग लाथेनरीब लाब ड्रमाद परें खनी चाय्रे नंग लुबुक्त नसा सिंह आगाम इखे ना तौरप की पोट से ममद जन नेता हिजम इराबोना थांगोल मैया थांगों तौर सकमीब इसे मोंग सूगुब पोट सिंहरीबे मरेबाब मजातीब कनिब की पोट सिंने खल सूगुब इसे मेक सूगुब सैरें मांग इग थी पोट से रिमाइन तौमीनबीद पोट से लाकद्रा खलीब मरोलब नुसीब मजातीब कनिब चखोटाईटोमेटिकली सामनर लाकदब पोट अमने खनजे मरमदना यूथ सिंह सिबु मोल तौबद कितनाब मरेबाब की पोट से कहीं मौम चा फिट तौब्रगती मायोनब येनब मैम खुद थीब मैम थेनरगूम पजें फिराल थेटकनी है पोट से फाजब खनी मपूब मिजें थमजनी Thank you.
2: ताइबंग माहिकोल से दतम लिबा नहा ओइरबा सिंगना करम करम मंगलान मंग लिबा हाइबगी मतांगदा महिरोय मगी मंगलान की मपाव मुक तमिनसी
3: आई गिमिंग क्यूरी कोइजम गौई आई लमसांग बाजार दगिनी मणिपुर आई इमाले बाग सनाले बाग से मसी से करम मणिपुर आई गी मंदा ओहेनिंगेना आइना थमजोन हाइब तारगदी आहनबदा ऐहा थमजनिंग से याम पीस हो शांति एस ए यूथ अमोना यूथ ने आई छात्र महिरोमनी यूथ सिंग से हेन फोकस तौनी अनीसुबदा प्रकृति से यूथ सिंग से इनखल नहा प्रकृति से नेचर लवर थमजगे मरमदी करिगिनो हाय मतमदा अखोनि हुजि मायोकनरिब समस्या मयाम से अखोगि क्लाइमेट चेंज सबम थोकतम मोंग द काहेन सारकपा अदेगि निंगथम थादोइरगसु यामन इंजेलकपा अदेगि तानजादना इंगदब मतमदन इंगदबा नोजु नोसा यामन नोंकन चुरग इसिंगि चाउसे अंगक पफन्न मणिपुर द होजु कसिक मायोकनरि से मतममदि थाइनगि मतमददि मछपने तरम देब अगि तुंगि जेनेरेशन सिदा अइन मंगजाइब मंगलान हाइजब तारे को आई मंगलान सिद्धि अखोने लाइक फनेम है बतारगसु थक्सी कासी थौगलोन बेबार से यागुद्रकति यादिब छात्र सिंह होगी यूथ सिंह से याम हेल्दी होबा अमो ओहेनिंगेन थमजगे याम न मसा मऊ फबा तिनजंग काइजंग दबा मयाम मसे याम ओहेनिंगी आई हाकी मोत तको मरमदि इसाबु फरबदि हेल्दीस वेल नहाइनरि बनेबो को अदुन इसाबु फरबदि बोन मंगमे लोइन मंगमे अखोने ट्रोइटिजम को ममाले बपिंग बसे याम न दगार तंगाई फदि नैना थमजगे ममाले बक्से नुशिरगदी पूर्णमक नुशिगने बको अखु इमाले बकिदमकता सिबकिदबताय अदेकि मयोंग याबताय थौना फना युनिटी होबताय बको मतममदा खै जहीतरि खुंता पतौकि को नुशिनादबा को अखुइना खाइबुंग खाइबुंग तारकपदिकि खुरकि इनलाय सारकपदिकि को अतोप एनवायरमेंट मयामदगि अखुइना अवाब कयाम मयोंगना ख्रेब को 7 इयर्स डिवाइस डिवास्टेशन जहीतरि खुंताक बसिना अवाब मयाम मनंगन ख्रबनेबा नंगले हाय अखोने वारी युने लिनबा नत्तबा मदुदगि तमजनिङायबा मयाम तमकानदा सा करमबा मणिपुर आइ मसिगि पान्दम से आइना यामने लैजै आइगि ड्रीम दा यामने युनिटी होइबा समा समा आइहाना पामजैगो तोबाको प्रोडक्ट्स छि यामने पक्तक नना मणिपुरगि नहासिंग से सेइस द इराक नरेबको अदो हाइबा सिंग से आइगि मोतदि मखोइदा निशागि इपाकता ताउदुन लैरगदि मखोइगि फ्युचर मखोइगि तुंगि जेनेरेसन से उब फंगरोइन थमजगे अदोना मखोइना यामन अफब समाज खुनाय मसेमगिदमकता निशागि मायोकता लैबा निशादगि लामना लैबा यामन तिनजंगाइजंगदबा यूथ ममम ओइबा हायबसे मसी आइगि थमजगे आइगि ड्रीम ने आइन खनजगे को अदुगा आइन लोशलकबदा हाइजबा तारे को आइगि इमाय पासिंग अछि याम नुशिबसे मसी याम दरकार ओइन खलेबा इमुंग मनुंगदा आइगि इमाय पा थक्सी कासी आइगि युमद लैमिनरिबा अमसुंग आइहाकि सोसाइटी द लैमिनरिबा मियोय सिंगसे यामन नुशिबा मा दरकार दायेबा लिसिंग मथक त थमजगिबा पॉइंट सिंगसे मयाम सुन लैबा तारगदि फ्यूचर मणिपुरगि फ्यूचर से यामन फजगनि यामन डायमंड मुक्ता हाइजबा तारे वर्ल्ड सिद इज द यामन पेरेल ओइना मणिपुर से यामन नुङाइबा मफम अमस ओइगनि मणिपुरगु खतनतना मालेमगि मफम खुदिमकतसु को यामन फजब अफब मणिपुर नि हाइबसे मयाम मिपोंग खुदिमकता अइना उहन बसे आइगि फ्यूचर आइगि ड्रीम मोइना मसि आइना पामजै हाइना थामजै
2: अरीबा आइबा सिंगना करुंग करम मंगलान मंगलमी अमसुंग मखोइगि मंगलान दुगा होजिक ओइरिबा मणिपुरगि फिवम सिगा कदाइ फाउबो खेतनरी अमसुंग करम करम मंगलान सिंग मथौ तारी हाइबगि मतांगदा मंगला नमगि मपाव मु तामिनसी
4: आइगि मिंग नहाकबम अरुणा आइ अमिताबिबगि सिनफमदा लाइरमी अदो खोइगि होजिकगि मतमसि मणिपुर से यामना चारांग खोइरांगनाबा तंगदु लैतादबा नुङाइतबा फिबम अमादा लैबदोंना लैतादे कोरिरोलदा लैजरकबा अमा ओइना अखोइदा होजिक चरांगनाबाय आमना थुइबसि क्रम हाइना तौरगा अखोइगि पुनिंगदा लैताबा लाकदगे हाइना हाइबसे होइ फिबम गया दगि लकबा साफु मयाम दगि असिगुम्बा लैतादबा फिबम असि ओइब अदुबु अखोइगि कोरिरोल नदि करि हाय अखोइदा करि ओहेनिङि हाइना हाइबसे खोरिरोलबु पामजबा अमा ओइना पादना नैनादना लाखवा मतमदा मदुदा अइबसिंना पिबिरमबा वखलोनदो मदु अखोइना सेना कोलगा paring du chatharak pataragadi hari bacharang na bese kharadi phandagadra hainadi khanbani aikhoigi aib singna kari hai apunba manipur amagi mangmangja dunata lai anowa manipuri saita aib singnadi yamna thamoi saungna wakhalwangna apunba manipur amagi manglanje mangduna dumanglai pajariba aikhoisu makhoigi manglandu delupsinjai manglandu gi phajaba achumba asengbaduda nungaina thamoida chetna konjaraga lakpani aikhoigi lamabam komol dr komol na kunjuba saisagi hek haugalapagi mirol haitai anoba manipuri saita sembirami basidi tarama panchuba saisagi aruoi batiketa taibang phaurakiba ma natraga kunjuba saisagi anganba diketa ID ahanba diket anishba diket swaida popiram mayam sina sembiram baduni makhoi gi manglan duni aikhoi se geographically ekhoi gi laimai role gi matung ina manipur se singtam haidana khaido ga su ekhoi gi aiba singna irammi ba makhoi na piramme ba vision makhoi na apaba ekhoi da lanthok piramme ba sidi apunba manipur amagi masak dr komol gi madhavi da mahangni amne nung sina ekhoi miyoi ba sida miing thamaga miyoi ba haiba se kathokpa amadi nung siba taibang pan punamak se nung siba gi wakhal lon se leiraba matamda di miyoi ba gi marakta khairi ba anemba awang ba haiba se masi amata leiroi aduna swata tyak na aduga bisaprem aina haiba isagi oijaba thadokpa punamak pu nung siba gi wakhal lon se masina naukon ba aduma khunai amagi manglan bibirame adage amuk hijamanga hal mahakna lisingamaga sanipan marfutara nithoida poglakpa tarama panchuba chahi sagi aroi diket ki mirol ni angang hal kwarpom chawa nasingma mayam lakaduri se aduna angang hal na amuk hakthengna na amuk magina ekhoi manipur sida tongan tongan ba phurup mayam leminari ba se masi nungsi na chanana hingminara ba matamda adungba khunai do chakhut kani aingba pur kani hai ba syam setna thajai aduna tongan tongan ba ikoi gi phurup ani khakki nayak nayika si lokhol laganda ani dugi nungsina ba gi thongsina khena ba ponamak se lanthok pangami samnan ba ngami hai ba gi wapamse jaherada pibirami aduga amuksu lisingamwa chamapan kuntarupta taibang phawirakhiba hijam guno magi nobel singgi khongcha sidadi apunba manipuramagi mapause magi punsida magi nobel loimpuraga lai haijabatai magi lamandagi hauraga singatamgase masi thadoknaba yadi singatamga nusinabana ikhoina manipur hairaga nusibagi ekhoigi iraiba akhi chakot hannabagi adugumba khongpham adul dalye pataragadi singatangmase khosamnaraga mapan thonggi tausinabana taba thamui thamui sinana khutka khutka paidna paloina dana chapminar kandadi mapan gi yengnabana su changmanga moi manungda su ingna laigani haina haiba paujel se mana lamandagi laman haiba se ima laibaki laman sina kwaidegi awang laman ni haina haiba se sengna phungdoktana manipur gi oiriba phibam siga hingakkadoba ekhoina tungda chatharakadoriba punsi gi lambi siga asi urakanda thambirambani ekhoina suyamna pamjaba haibatai koi tonga tonga manate apunba masak ama sagat kadawani aina haibase aduna asigumba apunba miyeng se ma nobel khudimakta dum yaure haibatare yamna digest tawna lupsinna yengagadi ekhoi se kanano manipuri haibase kanano ekhoi kanano ekhoi gi khungpham se kadai de lekodege na haibase ekhoi na pungning lupna yengagadi aiba gunona yamna ma gi kunchuba saisa gi lamansi 1958 phongmani aduna akon batang khai chedagi na ibagi nobel ibagi khongcha se sigi loirakpa 1992 kanwasida ipam me hore adi matungda namuk aidi singda satpini haina adu bhawada yengi base sing haibna kana no tam haibna bana kana no tam da su tongan tongan ba lining gi phuruk pile adu pulap si punjal lakanda aikhoi manipur apunba manipur haibase oibani haiduna tokhai ba wakhal se mat pi da ba aikhon mehrol da gi hauna Manipur aina hairaga leiriba apunba masakse gunogi warigi plot nungaiba plot na amuna sim sing da pugani amuna tam da pugani amuna mai gold da kolkata ta na pugani bangali nupi ama pusilakani adagi aidi sing da sat pinida kabui khunda musatkani lamanda chatpa adumaina sumaina punjhal kanda apunbagi masakama sum aikhoi da chinga ga purak pase sina aikhoi da di manipur si machet makai oina sungu upang ngamjade mapum oiba masak sida lakpane adagi amu athieng bada thorakpa joda chandra sanasam ketribira moidi athieng bada keno da khori rol da changakpane fiction da novel si pairakmani adai pokpagi sahida yengaga su 1944 da ni joda chandra sana samga ketribira ka poise hanna moi athieng bada puklokpa kangbu sida su aiba ama oina makhoi gi vision da su karam haina manipur se apun bai masak sit thangbadagi haibasida dumak moisula e aduna joda chandra gi lesatam le nangi dama ka thaj chanu sida yauri se phanayamna conflict leiraga su munaba leiraga su irang phanayamna leiraga su karam bamatam da irang du irang gi mai du mutkadagi karam bamatam da asigumba nungaina dabase mutkadagi haibada singa tamga anise amaga amaga nushina na thamoi dinaraba matamda phanayamna singala maisa asu natraga tamda masa langasu anisigi waroisi nama purup haibase maduni haidana hairiba novel singsida he he utleba ketribira suni mai phirepta singdai koigi singgi purup maringgi karigi leiriba masagi jodasandarna ukhrulgi tangkulgi isininau singgi magi lesatamle nangi damak haibasigi nayika si tangkul lesabi amani thermiwan naina sumaina ketribira gisu kenoda phirepta ikhu singa tangga ngai sanaba haidana gunona lamanda urkhiba adugumna ngai sanaba ise koi haujiki miron sina di ngai sanaba ise khambu khangaroi ko marup sanaba dubuni ngai sanaba haibase aduna ngai sanaba aduda awa anada mating pangna ba nasing bado aikhoi gi khori rol na tatana paudamli adugi mapau do aikhoi apa ba sing jasu tumak yauwe ba adubu aikhoi na ohenning ba aina haiba taragadi adugumba ai ba sing gi vision se hoi makhoi gi imagination makhoi kalpana gi machudi kalam oirak panina chairaga su adude yauriba asengba achumba a good beauty truth to adudi aikhoi na lowa ta bane ba aduna aikhoi na apunba aigi iramdam gi mangla nama haiba taragadi hairiba aiba singsina ullamiba phajaba machang oiba singdo aikhoi na madom moi gi dream ni moi gi mangla ni imagination ni eno khundopagi mahuta makhoi na hairami bdo karino aikhoi na lawgada bana karino haiba se aikhoi gi haujiki naharon singna chumna gi teksa tambada natana munna parakanda aikhoi na ase ramayan mahabharat se kanagumbana lining gi lari oina parasu kanagumbana aduda epic singdugi manung da yauriba mirol mirol lana challiba paukhong aduda kamaina miyoi bagi chaya chanai na basing se haujik ta gi wari na teba a lai hak tak ta gi ne ba do lai hak ta gi wari do haujik pawada madu nai na bagi loi banai tri kisi do thop tri ba adu maina koina nai na raganda ai khoi gi wakhal se he na pak thok chak tho halaba hena adudagi lauba yaba mangal singdu lauba maduda ireba iramdam segi apun bagi manglan se hena mapung pharakadra haibasi thamjagi
2: ilai pak leirambana aikhoi leirambani na chatnabi puari asi imalai bakini maye amasung lon sisu imalai bakini tongan tongan ba phurup singa sigi yumlai kairai ching pat durel mahusagi khudol kaya ngamnamak iramdam imalai ba manipur kini aigi imalai ba asidagi henna phajaba kadai dabu leiri kaba nungshida ko aigi imalai ba nungsi bapumnamakki haurup phamni imalai ba chingmi tammigi itin nafamni imalai ba inat ki sauthok phamni imalai ba piktakna kayada nungsi khraba ek imalai bakno mangkho manglan kaya leptana mangmi nakhisi irai pak iramdam sigidamak mangphaunahan si nomadi ngai si numitoi khoisu लेप कुमसी मथौ संगबदि थाजबगी पांगल पीसी मुटनाइद्रबा थवाई ओहनसी माबु इरैबाकी मंगलिम मंगलांदा इरैबाकी मंगलिम मंगलांदा हौजी ताबीरे मंगलई पाकता आईगी इरै पाक इरमदम थोरम पुथोपी नोंथोमबम रोमा थोरम लानतोपी खिबा युमनाम बब्लू
5: ताबीरे मंगलई पाकता आईगी इरै पाक इरमदम थोरम लानतोपी खिबा युमनाम बब्लू थोरम पुथोपा नोंथोमबम रोमा
6: इरमदम इरै चागिनी खन्ना नहा अहन खाइदना मतम मतम गी थोकनरपा मियो कया ngasi एखुइन थिंगरी
7: मखल मखल गी इलेक्शन लाकपदा अनुब अरिब कैंडिडेट सिंग चंगयंग गी दमक थोलुतुना लैबाक सेमबदा अचोब सरु ज्ञान बहोनरी
6: मिचम एखुइ मयाम नसु मखोइ बुकनानो करी थबक तोख्रबगे अदुगा करी करी तौरकनी हाइबसिदि खंगनिली
7: लाकदुरिब मणिपुर गी इलेक्शन दा कैंडिडेट ओबिनिंगलिब सिंग गी वकलोन फोंदोक चनबा अमदि मियामद मसक ताक्चनबा मिनिट अहुमदगी मंगा फौवा रेडियोगी खुथांगद संदोकनबा मतम थमजरी
6: स्पोंसर तौदुना संदोकचगदबा थौरमसिगिदमक आकाशवाणी फालकी कमर्शियल सेक्शनदा तानबियु

0: हेलो
1: हेलो
0: ताजर रे कनाओ बिरो बनो
1: फोन तो गए आई थियाम ने छांग लगे थियाम राम
0: होय करी सही तामी नसिके
1: कोई ने मेम फंग जब नो मुं पे बस थंगाई की लाइफ फोन ने जी फंग जब गु नसी सी तान तार मले
0: हनो
1: लम बग सखी
0: होय होना बबू लिप त्रगदी नोंगो दिमाई पाई है बदुनी को होय

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: ताबीर ब्रो।
1: मैम फोन तो गई भाई ना बोले वो टाइम है
0: हाई बी नाम बोल देगी।
1: आज ना बोले वो पापा वो आंटी की देन थोड़ी सलाम ले वो
0: ओ कहीं से ही तामी नसी गया।
1: काम काम से कुछ मरी फिल्म दो तो देगी हेलो हेलो तो वही सही
0: होय अदो मती अमलां थोपी रोई ड्रॉ
1: सही दो ना वो बजे खाई थी मैं मानो वो थी
0: होय होय हुली बनी मिहुल थवाई सिगी एन हाय बसे को
1: होय
0: अमरजीत लौरेम बम मन दी इमरल ले सांग थेम अनि ग्या पुन ब कोंजेल नि दालुम गुनु मयुम ने सैरेंग बा तेस तिंग थौ जाना सैरांग बै सै नि अदु दी इसै ngang बसु हैत्रे ताक पि र बनि ना इसै से कुदोल तम जेरगे ngasi phajana
1: होय होय
0: phabi ho ro mathang da sakpi na ba ko
1: होय मथे ग कल्चर गे नाम नो आइ
0: थागे चेरी।

युवराजन थवाईशाक वैसे ममा तुन शीघ्र ग्याई वशी करीगुम्ब शिरो खीद रहे युवराज जी थवाई है वाई ममा तुन सिंह ते ये नहीं

मखल मथियल की थोड़ों का या संदुक्तु ने ताहन जरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दिखनी हाउसी का मुंह मसीदा पुदुने लाग चरी गुड इवनिंग मणिपुर थोड़ा मसीदा महुसागुम थोड़म ताबीरी बपुम नमक ना एसएमएस द मधी व्हाट्सएप की खुथांग दा अदो मधोंग की ताबीरिंग बा मणिपुर फिल्म अमधी मतम शेष सिंह खनबीर ओ संदुक चरी बथोड़ा मसीबो मपुंग पान बियो अखोगी गुड इवनिंग मणिपुर की दमक थमजरीब मोबाइल नंबर मैम की मफम दा निंसिंग जगे 9863102016 जगे 9863102016 अदोंगे एसएमएस ngai चरी

0: आकाशवाणी इंफाल हौजे मणिपुरी द पाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इंफाल निंथोखोंजम सुनी न पाउ पाजरे कामजोंगी डेप्टी कमिश्नर एल एल कसुंगना जिला अदुदा सेवा संकल्प अभियान की थरम पांगथोकलिबसिंग यंगशिनख्रे डेप्टी कमिश्नर की ऑफिस द पांगथोकबा मिफम अमादा एल एन कसुंगना डीएलओ सिंग तोंगान तोंगान ब थबक थरम सिंग लौखिबो थौदांग सिंग नमक थागत ब फोंदोखे हौखिबो निमित तरिन एसिद सेवा संकल्प की सरुक अमो ओइना पांगथोकिबा तोंगान तोंगान ब विभाग सिंग की थबक थरम सिंग सु कुबनि यंगशिनखे लायुक अमसुंग रसना इब सांगदमनाबा थरम असिगी सरुक अमो ओइना पांगथोखरे कसुम खुले अमसुंग फुंग्यार की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमसुंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंग दा माइनर ओटी लैब टेस्टिंग अमदि ओपीडी की सर्विस की खुदोंचाब सिंग फंगन खरे मोबाइल मेडिकल यूनिट सिंग ना हेल्थ कैंप सिंग सु पांगथोखे हाईकोर्ट एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओइना इंग्लिसिंग अनि कुनतरुक तगे कुनिपान फाउब नोंनो थौपुगदब सिंग की वाशक लोबगि थौरम असि पांगथोखरे थौरमदुदा एसोसिएशन असि की दोंनो फौपुगदब मिय त्रामंगा वाशक लोखरे राज्य की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वीमेन हेल्पलाइन नंबर 181 यादबदगी मोबाइल नंबर 700577 6144 साइल हेल्पलाइन नंबर 1098 सु याकिदबदगी मोबाइल नंबर 811-991-8257 असि अतुप नंबर ओइना सिजिनरगनि हाइरि वाफम असि डिपार्टमेंट असि की डायरेक्टर असम राइफल्स ना कांगजोम जिला की एसडीसी नंबोल पुलिस स्टेशन की ओसी थौबाल पुलिस स्टेशन की पर्सनल सिंह इमा कैथिल सिंह इमा सिंह लिलोंग की मेटे पांगल लुचिंग सिंह सर्च की पास्टर नहा सिंह मदि क्लब की लुचिंग सिंह पुन फमी नदुना हेन अफब मरी थमनन वफम सिंह खनखरे असम राइफल्स की सिरोल में नहाय खुंगंग मफम सिंह द हेन खुदोंग चाप फंगन वफम सिंह सु खनखे अमरम दा मोरे दा असम राइफल्स ने चिंदुना तरामा थुई शुबा आयुर्वेद देग मरी लेनना मियाम सिंगा उनदुना आयुर्वेद की मतांग द खना नेने बगी थौरम अमा पांगथोखरे थौरम असी मरुएना आयुर्वेद ना हक्सेल गि लम लौरिबा मरुएब थौदांग सिंग अदु मियाम द सुगाइन खंगन नबा पांगथोखिबने मणिपुर सरकार की सेंट्रल फॉरेस्ट डिविजन ने सिंधुना लमलकी साउ चेक कनब पांदम द लायेकपा रचना इबा मसुंग क्विज कॉम्पिटिशन पांगथोखले फॉरेस्ट विभाग ना आइंगसा की खलगाक थमनब अकोबगी फिवम हेन फगदनब पांदम द मौसा की पोलम सिंह गाक सेंदुना थमनब महिरोय सिंह खगनब की पांदम द थौरम से पांगथोपनी मणिपुर फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लुआंग संगबम द वाइल्ड लाइफ क्विज कॉम्पिटिशन ngasi पांगथोखरे कॉम्पिटिशन असी द इंफाल ईस्ट अमसुंग इंफाल वेस्ट की महिरोय सिंह सरुक याकी नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी द एकेडमिक सेशन लिसिंग अनि कुंतरुक कुंतरे की ओइना क्लास सिक्स द मिन चंगदब खंगलब कैंडिडेट सिंह की मिंग लाउथोखरे एकेडमी असी की प्रिंसिपल ने थोप चिरोल में नहाय खंगलब कैंडिडेट सिंह ना एडमिशन की अकुप मरो सिंह कुमल लंपाक त लेब स्पोर्ट्स एकेडमी असी की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अमसुंग एकेडमी की वेबसाइट की खंग यागनी हरे केंद्र की हक्सेल अमसुंग एफयुम्बाल यैफथौरांग मंत्री जे पी नड्डाना हयेंग नई दिल्ली दा आरोग्य मंथन लिसिंग अनि कुंतरुक हौदोकलगनी थौरमसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ना सही निपान मपुंग फारक पा अमसुंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सही मंगा मपुंग फारक पग मरी लेनना पांगथोकदबनी थौरमसी दा मरुएना हक्सेल गी कुदोंग जाबसिंग फंगनमगी अमसुंग डिजिटल हेल्थ की मतांग दा थौरमसिंग पांगथोकनी हक्सेल अमसुंग एफयुम्बाल मंत्रालय नहाय आरोग्य मंथन लिसिंग अनि कुंतरुक असिना लेबाग असी की डिजिटल हेल्थ अमसुंग हेल्थ एश्योरेंस की लमदा हेन फगदनब लमसिंग यालगनी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ना बेंगलुरु दा सेबा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज हयेंग हौदोकलगनी गृह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय की पाउना हाय थौरांग असिना लेबाग असी की नहा सिंग दा मखोय मखोय ना मायुक नरीब खुदोंग चादब सिंग अदु खंगदोकतुना करम ना मदुबु मायुक नब गमगनी हायबगी मतांग दा मतिंग ओयगनी चैलेंज असिना नहा ओरिब थौरम असी दा सरुक यारिबा स्कूल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक अमसुंग कॉलेज अमदि यूनिवर्सिटी सिंग माइरोय सिंग अमतो ओइना पुंसिल हनब गमलगनी चैलेंज असिना मरोइना हिरम मंगा द मिडेंग थमली हिरम सिंह अदुगी मनुंग दा तरु तनानब मसा मरोम दम लेपचब गम भारत लौमी सिंह गी अवार्ड पा लेतब भारत इना खुलब भारत मसा मवु फब लमदम अमसुंग हैथोय सिंह थोयरब अकीब लेतब लेबा म ओहेनब हाइब वाफम सिंह याउरी सेल टू मंत्रालय न हाइरी Public sector bank amasung regional rural bank pnomok tha asiki kun tarit nongmaijing nimitta thong hangani masi miyamgi khudong chanabani pauloi jare.

मखन मथेल की थोड़ों कया संदोक तुने ताहंजरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिग अमुक पुंफम असिद पुदुन राक्षरी तोंगान तोंगान बा सैसक पसिंग दगी लौखचबा मणिपुरी मतम इशै अमदी फिल्म सैसिंग मथंग मथंग होइना खुदुल गे हानबद ताबिरसी अंग तामो फिल्म असिदगी पुष्परानी गिनाइतोम खोंजेलदा खाइदेम इमोना सैरिंग बा सैरांग बना एके यांगोई

गोली इसी में तो यो छिन गया। खंगदे खंगहौदे असुम असुम हौखिबना चही तरा मंगा फाजी लगले मचा की सक्तम उरकतबा निंजबा मंगलाना अमा मंगफाउनरकपना अमा खल्लु खल्लुरगा ममित्तगी पिरांग लेप्तना सिंधर ए तोमार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है इस्तकबाल है अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान दोस्तों कहते हैं ना कि दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो रात आते ही दिल कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है किसी की मुस्कान किसी की आवाज और किसी के साथ बिताया हुआ वो एक छोटा सा पल तो आज की शाम उन सभी लोगों के नाम जिनके दिल में किसी के लिए खास जगह है और उन लोगों के नाम भी जो प्यार और मोहब्बत तो महसूस करते हैं लेकिन उन्हें लफ्जों में शब्दों में बयां नहीं कर पाते तो चलिए कुछ देर के लिए दुनिया की सारी चिंताओं को दरकिनार कर देते हैं और डूब जाते हैं प्यार याद और मीठे उन मीठे एहसासों के नाम इस खूबसूरत से गीत के साथ

कितना खूबसूरत लफ्ज है ना, कभी किसी की एक नजर से दिल की धड़कन बदल जाती है, कभी कोई बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है, और कभी-कभी तो हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब कोई इंसान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम या यूं कहूं कि सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया, ठीक इस खूबसूरत से गीत की तरह।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

क्या खूबसूरत धुन थी और शायद कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो कानों से सीधा हमारे दिल तक पहुंचती हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि प्यार हमें बदलता नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी कुछ खूबसूरत चीजों को सामने ले आता है। हम किसी के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना सीख जाते हैं, किसी की पसंद याद रखने लगते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान देखने के लिए हर छोटी से छोटी कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता है बल्कि किसी की खुशी के लिए दिल से काम करना भी होता है। लेकिन दोस्तों की हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए, मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लफ्जों से नहीं बल्कि सम्मान, भरोसे और समझ से भी बनती है।

दोस्तों रात का अपना एक जादू होता है। दिन में हम कितने ही लोगों से घिरे रहें, कितनी ही बातें कर लें, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हम खुद से मिलने लगते हैं और इसी खामोशी में कभी किसी की याद बहुत करीब से महसूस होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 ट्रिलियन की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि MDR का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाज धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognised for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं हमें इन अनुभवों से भी सीखना है अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने
2: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with resolve to build a developed India. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and nation interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organized by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The Minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontations and the security dilemma. Government sources today emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे. उदयन, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज स्लंप. Sensex tumbles over 1200 points. Nifty settles at 23,063. The government says India's manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स 1,200 अंकों से अधिक फिसला. निफ्टी 23,063 के स्तर पर बंद हुआ. सरकार ने बताया कि देश में मोबाइल फोन की घरेलू मांग का 99% से अधिक का उत्पादन भारत में हो रहा है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 384 अंक लुढ़ककर 23,063 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी दबाव देखने को मिला. मिड कैप 100 सूचकांक 2.3% फिसला जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सत्र की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बैंकिंग तथा बीमा शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार को प्रभावित किया. सेंसेक्स और निफ्टी पूरे कारोबारी सत्र के दौरान दबाव में रहे और कारोबार के दूसरे हिस्से में बिकवाली और तेज.
0: Benchmark domestic equity indices slumped over 1.6% today. Sensex tanked 1,028 points to close at 73,581. Nifty plunged 384 points to settle at 23,063. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index shed 2.3%, while the small-cap 100 index lost over 1.5%. This morning, markets opened with a gap down as a spike in bond yields, elevated crude oil prices and a sell-off in banking and insurance stocks weighed on the indices. Sensex and Nifty remained under pressure throughout the session, with a sell-off intensifying during the

0: second half of the trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 29 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एनटीपीसी अपरिवर्तित रहा. प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस करीब 5.5%, एक्सिस बैंक 4.7% और बजाज फिनसर्व 4.1% नीचे बंद हुआ.
0: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, all 28 sectors edged downward. Among the top losers, mid-small private banks declined 2.8%, housing finance lost 2.6%, and financial services shed more than 2.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,884 companies declined, 1,473 companies advanced, and 216 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. उद्यन, हम जिस तरीके से मार्केट को अगर ट्रैक करते हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले लगभग कुछ महीनों से अगर मैं कहूं, तो हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड को लेकर के अभी कुछ दिनों से एक सतर्कता है मौजूद. कच्चे तेल के दाम कितने वॉलेटाइल हैं वो हम देख ही पा रहे हैं. लेकिन आज बीमा के शेयरों में जो एक उहापोह और उथल-पुथल देखने को नजर आया, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से इसने मार्केट की गिरावट में, जो 1.5% आज मार्केट गिरा, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया है?
2: जो बीमा क्षेत्र ने काफी कंट्रीब्यूट योगदान रहा, और उसका कारण यह है कि ये सिर्फ बीमा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये बैंकों से भी जुड़ा हुआ है.
1: तो दबाव उन स्टॉक्स पे भी हमने
2: बिल्कुल हुआ है. जो आपने कुछ बैंकों के नाम लिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, वो सीधा जुड़ा हुआ है. तो घटनाक्रम ऐसी रही कि IRDA जो आपकी बीमा क्षेत्र में रेगुलेटर है, जो मैनेज करती हैं, रेगुलेशन रेगुलेट करती हैं, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला जो कि बीमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वितरण होता है, उससे जुड़े वहाँ पे कमीशन मिलता है, वहाँ पे फीस होती हैं, तो उससे जुड़ी हुई कई बातें जो हैं उसमें, अभी तो वो नियम बने नहीं हैं, पर उसमें उनकी मंशा, उनकी सोच सामने आ रही है. और ये एकदम से नहीं आया, इसके बारे में काफ़ी संकेत मिल रहे थे और ये डिस्कशन पेपर आ गया. क्योंकि ये सरकार और रेगुलेटर की मंशा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि इस तरफ ये जा रहा है. और ये अभी जिस तरीके से बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस को किया जा रहा था, उसकी जिस तरीके से उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुनाफा जनरेट किया जाता था, उसके उसमें एक भारी बदलाव की के संकेत हैं. उसके वजह से आपके जो जितने भी कंपनीज, जो बीमा क्षेत्र की कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, स्वास्थ्य इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, जीवन बीमा हो गया, और वो बैंक जो वहाँ देखिए, बीमा का जो वितरण होता है वो दो तरीके से, एक तो एजेंटों के थ्रू से होता है, एक ब्रोकर जो ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिया होते हैं, उनके थ्रू से होते हैं, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट ब्रोकिंग, और तीसरा होता है बैंक के थ्रू से जाता है. तो ये तीन पाइप्स हैं जिनके थ्रू से आम जनता या जो भी उपभोक्ता है उसके पास पहुंचती. ये तीनों में असर है, ये जो डिस्कशन पेपर है वहां पे तीनों में असर है. और आप अगर बेचते हैं उसमें, उसके एवज में आपको जो कमीशन मिला करता, तो उसमें कमी के बारे में बात हो रही है. क्योंकि आप कमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कंपनियां उसको बेचती थी, जो इनको मैन्युफैक्चर करती, जो बीमा कंपनी इनको तैयार करके छोड़ते थे, क्योंकि अगर आपके बिचौलिए या ब्रोकर्स या एजेंट बेचेंगे तभी आप कमाएंगे
1: जी.
2: तो नंबर वन उनको फर्क पड़ा, बीमा कंपनी के जो कंपनी है वो उनको फर्क पड़ा, जो बीच में है उनको फर्क पड़ा, और जो बैंक है उनको फर्क पड़ा. तो अगर आप बीमा कंपनी और बैंक अगर ले लेते, बैंक खुद ही जो फाइनेंशियल सेक्टर में आप इंडेक्स में देख लीजिए, जबरदस्त उनका वेटेज है. तो ये दोनों मिला के ही, ये अगर ये तेल के दाम वाला जो सुर्खी जो है वो ना होता, ये खुद में ही काफी था. और उसके ऊपर तेल वाला हेडलाइन आ गया, जो उसकी खबर आएगी, जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिला, और चारों तरफ विश्व भर में बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड में जो आपको मिलता है उसमें भी आ गया. तो उस वजह से आपने इतना जबरदस्त मार्केट ने रिएक्शन देखा तो ये बताता चलूं एक एक एक सेंटेंस और कि बैंकों के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बैंकों के लिए इंश्योरेंस जब वो बेचते हैं वो फी इनकम है तो बैंकों के दो तरह की आय होते हैं एक तो वो आप और हम जैसे लोगों से पैसे लेके वो डिपॉजिट लेके फिर दूसरों को लोन देते हैं तो वो फंड इनकम होता है तो उसमें जो बीच में जो मार्जिन होता है उससे वो कमाते हैं ठीक है दूसरा होता है फी इनकम वो इंश्योरेंस को बेचते हैं उसके एवज में उनको एक परसेंटेज मिलता है ब्रॉडली हम मान के चलते हैं तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ऐड करता था अब अगर कोई आके कहता है कि आपका 15% या जो भी कमीशन था वो आपको नहीं मिलेगा या आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा तो उसमें पूरा जो आपने जो इन्वेस्टमेंट में जो गणित आप बनाते हैं निवेश करने से पहले एक बैंक में एक इंश्योरेंस कंपनी में या किसी ब्रोकिंग कंपनी में ऑनलाइन जो एग्रीगेटर्स हैं जो वो बेचते हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं सब में ये फर्क पड़ जाता है तो इसके वजह से आप देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो इस वजह से
0: So basically, IRD has recommended a cap on life insurance policy sales to the tune of 25%. Agencies making that commission fee and the distributors being banks of the income has been hit. We have more on that story from my co-anchor.
1: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है इसके अंतर्गत बीमा वितरण के लिए तीन स्तरीय सरल व्यवस्था खर्च की सीमाओं में कमी कमीशन ढांचे में बदलाव और बीमा की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं बीमा विनियामक ने बीमा वितरण की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव से संबंधित एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया है इसमें बीमा वितरण व्यवस्था खर्च कमीशन बाजार आचरण पारदर्शिता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव किया गया है प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत बीमा कंपनियों और बड़े वितरण संस्थानों को अपनी कमीशन नीतियों और ढांचे की जानकारी सरल और आसान भाषा में देनी होगी कुछ निर्धारित वाणिज्यिक बीमा पॉलिसियों में भी कमीशन से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा ताकि ग्राहक ये जान सके कि पॉलिसी की कीमत में वितरण की कितनी लागत शामिल है इरडा ने प्रस्ताव दिया है कि हर बीमा पॉलिसी को बेचने वाले संबंधित व्यक्ति की पहचान से जोड़ा जाए साथ ही बीमा की गलत बिक्री से जुड़े मामले की जानकारी सार्वजनिक की जाए और गलत बिक्री के मामले में एजेंट या संबंधित विक्रेता से कमीशन वापस लेने का प्रावधान किया जाए प्राधिकरण ने प्रस्तावित सुधारों पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 25 अक्टूबर 2026 तक सुझाव तथा टिप्पणियां आमंत्रित की हैं
0: उदयन व्हाइल देयर इज क्लियरली अ बेनिफिट फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज़ देयर कॉस्ट ऑफ बाइंग इंश्योरेंस इज लाइकली टू कम डाउन बिकॉज़ ऑफ अ कैप ऑन एजेंसी फी द मार्केट टुडे लॉस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपीस financial and insurance stocks because of the hit on their income sources. So with this policy decision, it's been a recommendation right now by IRDA. How do you see the markets bouncing back, especially in the backdrop of what's happening geopolitically?
2: Well, let's start with the insurance bit because I think it's fairly important what has come out. So, even if I want to be very restrained, I still cannot help but say this is the right thing to be done. Let's forget about the bank income aspect for a little while. Just for a little while, let's forget it. And just concentrate on why an insurance company exists. Does it exist for the stock market or does it exist to give protection to the people in this country? So my answer would be the latter. So if you're existing for your customer, then you should better be doing things which are in the interest of the customer. Now, if you see what you just read, you must have read about a couple of sentences on mis-selling. Mis-selling has been a terrible, terrible phenomenon in the insurance industry, and nobody can, in his right or her right mind, can ignore it. Now, in the study on the discussion paper, IRDA brings it out very clearly. Arjun, it's worth noting some of the stats are nothing to be proud of. If a person, on an average, an Indian buys an insurance policy, by the fifth year, half of them are not holding the policy. That's ridiculous, to say the least. And the 10th year, these are like 15-20 year policies. People are putting their hard earned money in insurance policy, and the maximum benefit that people are getting, which isn't if 100 rupees is the average benefit a person is getting from an insurance policy, the discussion paper says 37 rupees is coming from surrenders. So people are not, you know, sticking onto their life insurance policy. What good is a long-term commitment by a regulated institution when somebody cannot trust your product? So that has to change. And if there's a bloodbath in the stock market for a day, I think it's a very small price. Because imagine a person in his or her crisis, health crisis, life crisis, feels let down by the product or is uncovered, then there's no point in having an industry like this. So it's a very good thing that has happened. The other part is about the compression in margins. There are rules, okay? And if you're a smart manager, if you're a smart promoter, you'll adjust to the rules. Every industry has a set of rules. Now, one staggering statistics, let me share it with you. As a percentage of GDP, the coverage of life insurance in our country is abysmal. It's single digit. It's like 3 or 4% of the GDP. We have the largest population, but we have the 10th largest life insurance market. I cannot even wrap my head around such statistics. So it obviously this discussion paper has to move beyond immediate stock market reaction. I'm sure they'll bounce back, and it is not happening. They've talked about a glide path. They're not saying it's going to happen day after tomorrow. So all these things are required, you know, and eventually this will call for a much cleaner, better product, cleaner product. If your business spreads around, you'll do better. You know, the discussion paper, every para is so scary. You know, some of the new businesses happening from portability. You know, one customer, you're getting customers from existing customers. The idea is to add new people in our country. So, I mean, pretty much it's a bad report card for the industry that has been brought down by IRDA. I have friends, I have colleagues, and I have associates in the insurance industry. So obviously they'll take offense if they're listening to this. But when you see something like that, you really cannot be diplomatic about it. So I think if today investors have suffered, my sympathies are with them, because they're not going to need the money day after tomorrow. But this cleanup is badly needed.
1: एशियाई शेयर बाजारों में आज जापान का निके लगभग 0.8% बढ़ा, वहीं दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहा.
0: How concerned are you about Asian markets correcting today as well with what's happening geopolitically, bond yield, what's happening with the US stock market, with the AI sell-off and the oil market which is creeping into global inflation? Everything is costing more because of oil prices, and really the flow of oil being affected by wars at two fronts.
2: Well, Arjun, they're actually, whatever you said, they're all interlinked, okay? So oil prices rising means higher pressure all around, governments possibly borrowing more. If they borrow more, they'll borrow more for a longer tenure. If they borrow for more a longer tenure, they'll have to offer more so that they can raise money. If the long-dated, longer tenured bonds, their yields go up, that means what's happening is the value, because they're inversely, value of a debt investment is inversely related to the interest rate, right? The coupon. So if they are rising, your value of your existing bond investments are going down. So anybody who's holding those investments, you know, trying to balance, having an asset allocation, little bit of equity, little bit of debt and whatever. So their portfolios are getting hit, right? So all those things are related. And of course, you mentioned AI. They are, they have monster appetites for debt now, okay? Whether it's equity, whether it's debt. If governments are going to borrow, who's going to lend to them? So it's a crowding out that's happening. So see, that's how it's happening. See, I have 100 rupees in the system. Suddenly government says I'm going to borrow 50 rupees more. What's going to happen to somebody who needs 90 rupees? naturally the government comes and raises money more because the government's risk is less. So where will the money go? It'll go to the government, right? So that is which is basically called crowding out. I mean, in my way,
0: there's also a lot of private sector borrowing by pledging assets, usually hardware of IT companies, to propel the boom of AI investment. That's also hit many of the companies which are listed on these Asian stock markets. So I want to bring your attention to the Nikkei 225, which actually rose. It was a contrarian rise to 0.8%. Tell us about the Bank of Japan, their decision to raise the repo rate to 1.25%. It's been very low, 1% only, 1.25%.
2: Well, Arjun, the thing is that Japan is seeing something which it has not seen in the last, since 90s, you know. They're actually seeing inflation. And that is because the government has said we're going to spend our way out of this mess that we are in. Now, that has made the global markets nervous because people used to bring money to Japan and get it into yen and then invest.
0: The carry-on trade.
2: Yeah, carry trade. So that mechanism is now under stress. And the borrowing which the Japanese government is doing is making people nervous. And that's why it's every time you'll see in any global market review, Japan is getting the headlines or whatever coverage.
0: In more news, Electronics and IT Secretary S. Krishnan has said that India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones, addressing the inaugural session of the 13th Annual Public Affairs Forum of India 2026 in New Delhi today. Mr. Krishnan said that India manufactures around 32 to 33 crore mobile phones annually. He added that five major global phone brands are present in India and are manufacturing the devices in the country. In more news, RBI Deputy Governor Rohit Jain today said technology was no longer merely an enabler of banking but was increasingly becoming a part of bank's risk architecture. Addressing the 13th SBI Banking and Economics Conclave 2026 in Mumbai, Mr. Jain highlighted the growing role of technology in banking and said technology is now embedded in almost every critical banking function. While talking to the media on the sidelines of the conclave, the deputy governor said that due to the festive season, there's a lot of credit demand on managing liquidity. He said banks will have little difficulty deploying available liquidity in the coming months as credit demand continues to grow at 19 to 20%. The key question is at what rate?
2: Yeah, but at the moment still it is, we haven't seen any kind of cascading effect. It's still we still haven't reached a stage, Arjun, where we'll have to have a crease on our foreheads. So, but maybe at some point, some of these things will show up. I mean, the oil price, domino effect.
0: More news. The government has reduced the basic customs duty on a major imported crude edible oils to moderate domestic edible oil prices. This will provide relief to consumers and help mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been reduced from 10% to nil, while the basic customs duty on crude soybean oil and crude palm oil has been reduced from 10% to 5%. The new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of next month. Under this framework, the unified payments interface UPI transactions of up to 2000 rupees will attract zero MDR merchant discount rate. Here are details on how UPI MDR is different from traditional debit and credit card MDRs.
3: National Payments Corporation of India, NPCI, has said that UPI MDR is structured to be much lower than all traditional card-based transaction fees. Standard credit card MDRs typically range from 1.5 to 2.5% per transaction. Debit card MDRs are capped at up to 0.90%. NPCI has said that the baseline UPI MDR of 0.4% on transactions above 2000 rupees with a cap of 300 rupees for high value purchases has been set to ensure that UPI remains the most affordable digital payment acceptance tool for commercial enterprises. It said that this cost difference helps merchants lower their payment processing expenses while accepting digital transactions. Ayushi Singh for Market Mantra.
1: अमेरिका और चीन ने अपने व्यापार युद्ध विराम को 2 महीने बढ़ाने पर सहमति जताई है. इससे दोनों देशों को व्यापक आर्थिक समझौते पर बातचीत के लिए और समय मिलेगा. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बुसान समझौते के अंतर्गत हुआ ये युद्ध विराम अब 10 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा. मूल युद्ध विराम समझौते की अवधि 10 नवंबर को समाप्त होने वाली थी. ये समझौता पिछले अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई सहमति के बाद हुआ था. इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में ढील और व्यापार युद्ध के दौरान लगाए गए भारी शुल्क को रोकना शामिल है. ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं. उदयन, आप इसे कैसे देखते हैं और बेसिकली स्टॉक मार्केट पर इसका आप कैसा प्रभाव देखेंगे?
2: नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, पर दिलचस्प बात यह है कि अभी ये तब हो रहा है जब वो 100% 100% टैरिफ लगाने वाली बात हो रही है कि जो भी रशिया से तेल लेंगे. देखिए कैसे मानदंड है, चीन के लिए एक मानदंड है
1: जी,
2: और हमारे लिए एक मानदंड है
1: जी.
2: तो ये आपने सवाल पूछा नहीं था, पर ये बताने लायक बात है
1: जी, बिल्कुल.
2: क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बातचीत भारत और अमरीकी प्रशासन के बीच में हो रहा है, तो दिलचस्प बात ये कि उससे जो नेगेटिव हेडलाइन बनता है और सेंटिमेंट बनता है, क्योंकि बुरे खबरों का जो हेडलाइंस हैं वो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो उसका जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, हाई ऑयल प्राइसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्लाई चेन के ऊपर असर, तो एक और सुर्खी ऐसी आ जाती जो नेगेटिव होती है, उससे बेहतर है कि जितने हैं उसी को हम मैनेज करें.
0: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 2.1% higher at $105.25 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.7% up at $93.76 per barrel at the time of writing this report. Then some more bad news. Diesel prices have been going up substantially in this short term. How is that going to be arrested?
2: I don't know much about diesel prices in India. I've only read about in the US. But if they are going up, I'm sure the government is going to intervene, because it's an essential input in agriculture and in your transport. So I don't think the government is going to be a spectator in this, and they will come into act. But this is not as tough, Arjun, to manage as the LPG problem and the natural gas problem, which we were
0: importing. Affecting Russia and Europe because of what's happening.
2: Of course, we have long-term contracts with Qatar, so that was an issue, but I think this is more manageable, I would say.
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 0.8% की गिरावट के साथ 1,50,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग 2% के नुकसान से 2,28,248 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई. उदयन, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और अर्जुन के सवालों के जवाब देने के लिए.
2: धन्यवाद.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices slump. Sensex tumbles over 1,200 points. Nifty settles at 23,063. The government says India is manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 trillion की अर्थव्यवस्था है और $30 trillion की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने

0: घाना जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्चस्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने समावेशी विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्था में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said, spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognised for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to customers and mitigate inflationary pressures rising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jayashankar said, the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, आवाज है मुकेश की और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

जी हाँ, एक वो भी जमाना हुआ करता था जब परदेश जाने वाले की एक उम्मीद बंधी होती थी कि परदेसी परदेश में सुकून से अपना काम कर पाता था और प्रेम को संजो कर रख पाता था, क्योंकि प्रेम खत में बंद होकर पास पहुंचता रहता था और उसी प्रेम के सहारे वो परदेश में खुशी खुशी अपना काम करता था, जीवन यापन के संसाधन जुटाता था और फिर उन संसाधनों के साथ प्रेम की सौगात लेकर वापस अपने गांव की तरफ लौटता था, अपने घर की तरफ लौटता था। एक वो भी जमाना हुआ करता था। कभी खत लिखना एक रस्म हुआ करती थी। कागज पर किसी अपने का नाम लिखते ही मन खिल उठता था। स्याही सूखने तक जैसे भावनाएं उसी पन्ने पर सांस लेती थी और फिर लिफाफा बंद होता और इंतजार शुरू। डाकिये की साइकिल की घंटी कितनी प्यारी लगती थी उन दिनों। एक खत आता था और पूरा दिन अपना हो जाता था। और आज संदेश पल भर में पहुंचते हैं, मगर उस इंतजार जैसी मिठास नहीं होती। कहते हैं कुछ रिश्ते शायद दूरी से नहीं पर इंतजार से गहरे हुआ करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उसी पुराने जमाने की ओर और लौटते हैं उसी पुराने जमाने में, करते हैं ढेर सारी बातें। फिलहाल सुनते हैं एक गीत, आवाज है आशा भोसले की और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में मैं हूं आपके साथ जयती। बात कर रहे हैं उस जमाने की जब खत लिखना किसी रस्म की तरह हुआ करती थी और निभाने वाले बड़े मन से इस रस्म को निभाया करते थे। गांव की गलियों में डाकिये की आहट कभी किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। लोग अपने नाम की पुकार सुनने को बेचैन रहा करते थे। किसी के लिए मायके का खत आता और किसी के लिए परदेश गए पिया का संदेश होता। नवविवाहिता के लिए तो वह लिफाफा जैसे उसके अपने घर की खुशबू लेकर आता और कभी कभी प्रेम में सराबोर होकर वो खत जब नवविवाहिता के पास पहुंचता तो चेहरे पे जो रंग आते थे वो रंग भी देखने लायक होता था। कागज खोलने से पहले ही आंखें जाने कितनी बातें पढ़ लिया करती थीं। एक छोटा सा खत कई दिनों की दूरी मिटा देता था। आज आवाज और तस्वीरें तुरंत पहुंच जाती हैं, पर उस कागज को छूकर अपनेपन को महसूस करने की जो बात हुआ करती थी वो बिल्कुल अलग हुआ करती थी। और यही था खतों का वो खूबसूरत सा दौर। आगे और भी बातें करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक गीत। फिल्म का नाम है मेरे लाल, आवाज है लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज हम बात कर रहे हैं बीते जमाने में जो खतों की एक दुनिया हुआ करती थी, जब खत लिखना सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। खतों में छुपी होती थी दुनिया भर की बातें, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा इंतजार और न जाने कितनी सारी बातें। कागज के एक टुकड़े में बंद होकर वो खत, जिसे जहां पाना होता था, जब वो खत मिलता था तो पाने वाला भी उन सारे एहसासों से होकर गुजरता था जो लिखने वाला कागज में बंद करके अपने प्रियतम तक पहुंचाता था। गांव की नई दुल्हन को मायके से आया खत सिर्फ कुछ पन्ने नहीं, पूरा अपना घर जैसा लगता था। माँ की लिखावट देखते ही आंखों में आंगन उतर आता, बाबूजी का हाल पढ़ते हुए मन जैसे घर की चौखट तक पहुंच जाता था।

भाई की शरारतें, बहन की शिकायतें, सब कुछ कुछ पंक्तियों में समाया होता था। वो खत पढ़कर कई बार तह किया जाता, फिर संदूक या कपड़ों के बीच बड़े जतन से रख दिया जाता, क्योंकि कागज पुराना हो सकता था मगर उसमें लिखे अपने लोगों के शब्द कभी पुराने नहीं होते। शायद इसलिए खतों में आज भी स्मृतियां कहीं ना कहीं जीवित हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है मोहम्मद रफी की।

रात ढली तो पारिजात ने, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, जैसे नव ने चुपके से तारे भेजे हों धूलों से। केसरिया डंठल वाले सफेद फूल कितने प्यारे, ओस में भीगे लगते हैं धरती के सपनों से न्यारे। भोर हुई तो शाखें खाली, आंगन फूलों से भर आया। रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया, रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया। भोर की पहली किरण पड़ी, पारिजात मुस्कुराया, रात की गोद से झरकर धरती ने श्रृंगार सजाया। सफेद पंखुड़ियों के बीच केसरिया रंग दमकता है, जैसे किसी चित्रकार ने एक रंग से स्वप्न रचा है। हवा चले तो महक उठे पूरा आंगन पूरा द्वार, इतना कोमल इतना कोमल फूल की जैसे छू जाए कोई मधुर विचार। पारिजात की इस खुशबू में रात अभी भी बाकी है, भोर भले आ गई हो लेकिन फूलों में अब भी रात बाकी है, फूलों में अब भी रात बाकी है। और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है भाभी।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अभी तो मरने हुआ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी विधायक छोटे लाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर परिवार उन्हें आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे लाल वर्मा का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। तंजानिया से कांगो जा रही एक नाव कल टांगानिका झील में उलट गई। हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में लगभग 100 लोग और सामान लदा हुआ था।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार

थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे खतों की, और भी बातें करेंगे खतों की, उस जमाने की बातें करेंगे, लेकिन जब इतनी बातें हो चली हैं तो क्यों ना हम थोड़ी बातें मौसम की भी कर लें। जी हाँ, बारिश का जाता हुआ मौसम अपने पीछे बहुत सारी मीठी मीठी यादें छोड़ कर जाता है। बारिश भी हमें बीते जमाने की याद दिलाती है। बचपन में बारिश आती थी तो गली का पानी जो है वो नदी बन जाता था, कागज की नाव बहती थी, और उसे बहते देखना किसी बड़े सफर से कम नहीं लगता था। किसी की नाव सबसे आगे निकलती और किसी की मोड़ पर पलट जाती। हारने का दुख भी बस उतनी ही देर रहता जितनी देर दूसरी नाव बनाने में लगती। आज उम्र ने बहुत कुछ सिखा दिया, मगर उस खेल की एक बात अब भी बहुत खूबसूरत है, चल पड़ने के लिए हमेशा बड़ी नाव की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक साधारण सा कागज भी पूरे बचपन को एक छोटी सी नदी दे देता है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है बातों बातों में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है चंबल की कसम।

बात हो रही थी खतों की, पुराने जमाने की। तो खतों के जमाने में इंतजार की भी अपनी खूबसूरती थी। जवाब आने में कई कई दिन लग जाते, लेकिन उन दिनों में हर आहट उम्मीद बनकर आती थी। डाक घर से निकला एक लिफाफा कितनी दूरियां पार करता था, किसी शहर से किसी गांव तक, किसी आंगन से किसी मन तक। आज हम पढ़ लिया और देख लिया, कुछ सेकंड में जान लेते हैं। तब एक जवाब के लिए कई दिन दिल थाम कर बैठना पड़ता था। शायद इसलिए उन दिनों के रिश्तों में शब्दों की कीमत ज्यादा महसूस होती थी। एक खत देर से आता, मगर आते ही जैसे पूरा इंतजार सार्थक कर देता था। सुन रहे हैं आप गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म का नाम है साजन, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

और एक बार फिर से वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते ही एक प्यारे से गीत के साथ आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है आप आए बहार आए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छे सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वीं नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। नदी उत्सव के तहत 6 प्रदर्शनियां इस महीने की 30 तारीख तक हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4th उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा। इस 5 दिन के आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये व्यापार मेला 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत पहली बार UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। ये फैसला महाराष्ट्र और पूरे देश की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी से अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग मानचित्र पर पुणे की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं हमें इन अनुभवों से भी सीखना है अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने
2: Mr. Modi said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate, MDR, on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJ and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission ABDM at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The Ministry of Health and Family Welfare has said Arogya Manthan 2026 will also witness the launch of a number of initiatives aimed at further strengthening India's digital health and health assurance ecosystem. Education Minister Pralhad Joshi will inaugurate the Seva First Innovation Challenge in Bengaluru today. The Education Ministry said the initiative will encourage young people to identify problems they see in their communities and develop solutions that can be tested, improved and taken towards implementation. The challenge will bring together young participants from schools, industrial training institutes, polytechnics, colleges and universities. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 Chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Earlier, Mr. George participated in a high-level side co-hosted by Ghana, Germany and France, Reparatory Justice. In the Asian Games 2026, Indian runners have clinched to silver in the mixed 4x400m relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000-meter race after finishing at third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000-meter event at the Asian Games in 16 years. Earlier, in shooting, Anandjit Singh Naruka and Parinaz Dhaliwal also bagged bronze in the mixed ski team event, the first-ever medal for India in this category. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbha today. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana today. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में हम बातें कर रहे हैं। आज जो विषय लेकर हम आपके पास आए हैं वो है पुराना जमाना, और खासकर जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं खतों की। जी हाँ, जब खतों की बातें चली हैं तो पाना, लिखना, खत भेजना, इन सारी बातों में एक और बात आती है कि खत लिखने वालों के लिए ये भी किसी धुन से कम नहीं थे जो बैठकर खत लिखा करते थे। पहले सोचा जाता था कि क्या लिखना है, फिर शब्द चुने जाते थे, और फिर पन्ने पर एक एक बात बड़ी कारीगरी के साथ उतारी जाती थी। गलती हो जाए तो पूरा पन्ना बदलना पड़ता था, इसलिए लिखे हुए शब्दों में एक ठहराव, एक सावधानी होती थी। शायद इसी कारण पुराने खत पढ़ते हुए हमें सिर्फ लिखा हुआ नहीं, लिखने वाले का मन भी महसूस होता था। हर अक्षर में उसका समय लगा था, हर पंक्ति में उसका इंतजार। यही तो खतों की असली खूबसूरती थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। आज हमने बहुत ढेर सारी बात की, बीते हुए जमाने की, खतों की, बारिश की, पर कुछ बातें खतों की अब भी रहती हैं। ये वो जमाना था जिसकी जितनी बातें करें बातें निकलती चली आती हैं। पुराने घरों के संदूक में कपड़ों के साथ कुछ खत भी बड़े जतन से रखे जाते थे। कागज पीला पड़ चुका होता था, स्याही भी कहीं कहीं हल्की हो जाती, मगर पढ़ने वाले की आंखों में वही कहानी आज भी साफ साफ दिखाई दे रही होती। हर खत किसी बीते हुए रिश्ते का प्रमाण नहीं, हर बीता हुआ समय किसी की धरोहर होता था। उसे खोलते ही कई आवाजें लौटकर आसपास आ जाती थी, मां की, पिता की, किसी भाई की, किसी प्रिय की। आज शायद हम संदेश डिजिटल दुनिया में सुरक्षित करके रख भी लेते हैं, लेकिन पुराने खतों की तरह उन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। कागज सचमुच यादों को एक आकार दे देता था, जिन्हें देखकर, जिन्हें छूकर, जिन्हें पढ़कर हम न जाने कहां से कहां पहुंच जाते। एक गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक गांव के एक छोटे से घर में बैठी हुई नई नवेली दूर अपने पिया के पास परदेश में खतों के माध्यम से पहुंच जाती, और पिया की जो वो भावनाएं थी वो नवेली के पास खतों में सिमट कर पहुंच जाती। कितना सुंदर होता था वो दौर, जिस दौर को हम जाने कहां पीछे छोड़ आए हैं। सुन रहे हैं आप रात सुरमई, और अगला गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अर्पण।

0: उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघल कर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं?

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ ही हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

तो मुझे दीजिए अनुमति, छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के

0: निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। पांच दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों के सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री, मोबाइल ऐप और अन्य शामिल हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिकार नहीं है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
2: संभावना है।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognised for their last mile delivery.
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: मिस्टर मोदी,

और जैसे किसी अधूरी दास्तान को अचानक उसका सबसे खूबसूरत लफ्ज मिल जाए। कहते हैं मोहब्बत सिर्फ किसी का साथ पाना नहीं, बल्कि उसके आने से अपनी दुनिया को रोशन होते देखना भी है। आज का ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसी ही कैफियत अपने अंदर समेटे हुए हैं। एक ऐसा गीत जिसमें मिलन की खुशी है, दिल की नरमी और रिश्तों की वो गहराई है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। गुलजार साहब के खूबसूरत अल्फाज और आरडी बर्मन साहब के दिल को छू लेने वाले ये संगीत और लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की आवाज, तो फिर ये दुनिया ही बिल्कुल अलग सी लगने लगती है। फिल्म आंधी का ये बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमा आपके लिए हमराही के इस महफिल के आगाज में।

आ गया है। हर इंसान की जिंदगी में कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसके आने की खुशियां इतनी खूबसूरत होती है कि पूरी जिंदगी उसी एहसास के साए में गुजार देने की कोशिश करता है। कहते हैं दिल की किताब का पहला पन्ना हमेशा कोरा होता है, ना कोई कहानी ना कोई अफसाना, बस कुछ अनकहे ख्वाब और अनजाने एहसास। फिर जिंदगी में कोई आता है और उसकी एक मुस्कुराहट, एक नजर, एक मुलाकात उस कोरे कागज पर मोहब्बत की पहली इबारत लिख देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं पड़ती, बस किसी का साथ, उसकी आवाज और उसके होने का एहसास दिल को मुकम्मल कर देता है। आज का अगला ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा गीत जिसमें इश्क की मासूमियत है, जज्बात की रवानी है और प्यार के रंगों से सजे एक दिल की कहानी है। फिल्म आराधना का ये सदाबहार गीत आनंद बख्शी साहब के अल्फाज, एस डी बर्मन का बेहद खूबसूरत संगीत और किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का जादू जो आज भी दिल के किसी खामोश कोने को छू जाते हैं और फिर ऐसे अल्फाज निकलने लगते हैं। आज अपने दिल के उस कोरे कागज को कुछ हसीन यादों के हवाले करते हैं हम और आप मिलकर, शायद कोई पुरानी मोहब्बत याद आ जाए, शायद कोई भूला हुआ चेहरा मुस्कुरा उठे, या शायद किसी खास शख्स की कमी से ये महसूस हो जाए। कोई था हमारी जिंदगी में जिस नगमे के जरिए लौट कर आ गया है।

0: क्या हुआ?
1: अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती।
0: अरे विनू, तुम खाम का घबरा रही हो, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग, मेरे पास आओ।
1: छोड़ दो मुझे, तुम नशे में हो।
0: डार्लिंग डार्लिंग, नशा शराब का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का।
1: मत छुओ मुझे।
0: अरे विनू मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो विनू मेरी बात तो सुनो। विनू रुक जाओ, अरे वापिस आ जाओ।

0: अफसोस की बात है, तुमने मुझे इतना खराब समझा, चाय के पानी को शराब समझा। अरे पी के देखो पानी है, ये तुम्हारे टीकाराम का आइडिया।
1: कुछ भी हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तो जान निकल गई थी।
0: ए, मेरी जान तो तुम हो, तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता।
1: अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना।
0: नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता, और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली और सुबह की हर कली खिल उठती है।
2: तो दोस्तों ये था ये एक ऐसा नगमा जिसने मोहब्बत के कोरे कागज पर यादों के रंग भर दिए। जिंदगी में चाहे कितने भी मसरूफियात क्यों ना हो, कभी कभी ठहर कर उन एहसासात को याद कर लेना चाहिए जिन्होंने हमें मुस्कुराना सिखाया। आपकी शाम, आपकी रात और आपकी हर सुबह संगीत से महकती रहे, इसी दुआ के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले खूबसूरत नगमे की तरफ। बने रहिए क्योंकि आपकी फरमाइशें, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत ही हमारे इस रेडियो सफर की असली रौनक है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगाम के ज़रिए। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गीत और संगीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को यूं ही आगे बढ़ाएंगे बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ। फिलहाल ये पैगाम आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:30 और 42 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की और मैं हूं आपका हमराही आपके साथ। रात की खामोशी में कुछ नगमे और भी खूबसूरत लगते हैं और जब बात हो मोहब्बत के उन इशारों की जिन्हें सिर्फ दिल समझता है तो ये गीत अपने आप में एक हसीन अफसाना बन जाता है। किसी की आंखों में छुपी शरारत, किसी की मुस्कान में बसी नजाकत और किसी के करीब होने का वो एहसास जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है। कभी किसी ने आपको सिर्फ एक नजर से इतना कुछ कह दिया है कि जवाब में आपके पास कोई लफ्ज ही नहीं बचा। अगर हाँ तो शायद आप भी जानते हैं कि इश्क की सबसे खूबसूरत गुफ्तगू अक्सर खामोशी में होती है। तो आइए इसी एहसास को एक बार फिर जीते हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। फिल्म कश्मीर की कली का ये सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

किसी की आंखों में छुपा सवाल पढ़ा है आपने? कभी किसी ने मुस्कुरा कर यूं पूछा हो कि दिल में कौन बसा है, और आप जवाब देने के बजाय बस नजरें झुका ले हैं। मोहब्बत की दुनिया भी बड़ी अजीब है दोस्तों। यहां कभी एक सवाल में पूरी दास्तान छुपी होती है, और कभी एक मुस्कान में इकरार होता है, और कभी किसी की छेड़छाड़ भरी बात दिल की धड़कनों को बेकरार कर देती है। अगला ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही चुलबुली मोहब्बत, मीठी नोक झोंक और दिलकश सवालों से सजा हुआ ये नगमा एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की मासूमियत है, गांवों की मिट्टी की खुशबू है, और रिश्तों की वो अपनापन भरी मिठास जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत अल्फाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का बेहद खूबसूरत सुरीला संगीत, और मुकेश जी और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का ये जादू। मिलन फिल्म का ये सदाबहार नगमा हमें याद दिलाता है कि इश्क में सवाल भी कितने हसीन हो सकते हैं, और जवाब का इंतजार भी कितना दिलकश। तो दोस्तों, जरा अपनी फिक्रों को किनारे रखिए, दिल में थोड़ी सी शरारत जगाइए, और याद कीजिए वो लम्हे जब किसी खास शख्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर वो बेहद खूबसूरत मुस्कान आ जाया करती थी। अब सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मैं फिर से जी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही में मैं ये बेहद खूबसूरत नगमों को लेकर हाजिर हूँ आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपके अपनी पसंदीदा हमराही की और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। अब तमाम लोगों के बेहद खूबसूरत पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं, कोशिश करेंगे उन्हें भी हम शामिल करें, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ। दोस्तों कहते हैं इश्क भी कितना अजीब है ना, कभी दिल को सुकून देता है, कभी चेहरे पर मुस्कान लाता है, और कभी किसी की एक नजर, एक अदा, एक प्यारी सी बात हमें इस कदर बेकरार कर देती है कि दिल बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपकी जिंदगी में यूं दाखिल हो जाए जैसे कोई मीठी धुन खामोश शाम में उतरती चली जाती है, उसकी आवाज सुनते ही दिल खिल उठते हैं, उसकी मुस्कान देखते ही वक्त थम सा जाता है, और उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा एक हसीन याद बन जाती है। फिर दिल कहता है हुजूर ये मोहब्बत है या कोई जादू। अगला यह नगमा भी कुछ ऐसी ही शरारत वाला है, कुछ ऐसा ही बेकरारी, ऐसी ही बेकरारी और ढेर सारी मोहब्बत से सजा ये बेहद खूबसूरत नगमा मजरूह सुल्तानपुरी साहब के दिलकश अल्फाज और आरडी बर्मन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत, किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का वो जादू जो सुनते ही दिल में इश्क की हल्की सी लहर दौड़ा दे। फिल्म मेरे जीवन साथी का ये खूबसूरत नगमा जिसमें मोहब्बत की शरारत भी है, इकरार की मिठास भी है, और किसी खास शख्स के लिए दिल की वो बेकरारी भी जिसे छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। दिल को थोड़ा सा और मचलने दीजिए और उस खूबसूरत एहसास में खो जाइए जहां कोई आपको इतना प्यार, इतना प्यारा लगने लगे कि शिकायत भी मोहब्बत जैसी महसूस हो जाए।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये था मोहब्बत की शरारत और दिल की बेकरारी से सजा बेहद खूबसूरत नगमा। कभी कभी किसी गीत में हमें अपनी ही कहानी सुनाई देने लगती है, किसी की याद, किसी की मुस्कान या किसी के साथ बिताया हुआ वो खूबसूरत लम्हा जिसे हम आज भी दिल में सजो कर रखते हैं, वो तमाम चीजें याद आने लगती है ऐसे नगमों को सुनने के बाद। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हम ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हैं हमराही के इस दिलकश महफिल में। बहुत सारे पैगाम हम तक पहुंचे हैं, जिनमें फहीम साहब ने एक पैगाम भेजा है जम्मू से। किशन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है लेकिन दिल की गहराइयों से अपना प्यार भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ कुंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कुंवर सिंह ये पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है और आप हमें सुनते हैं, आपको पसंद आता है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिल के करीब जो नगमे हैं उन्हें ही हम आपके लिए लेकर आएँ ताकि आप उसे और पसंद करें और बेहद मोहब्बत के साथ हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आगे बढ़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। दोस्तों कहते हैं संगीत की कोई जबान नहीं होती, वो दिल से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंच जाता है। कभी किसी धुन पर पांव खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, कभी कोई ताल हमारी हथेलियों को ताली बजाने पर मजबूर कर देती है, और कभी कोई गीत ऐसा होता है जिसमें मोहब्बत भी होती है, मस्ती भी होती है और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी। अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, इसे सुनकर आप यकीनन जरूर गुनगुनाएंगे भी और झूमने भी लेंगे। एक ऐसी धुन जिसमें लोक संगीत की मिठास है, इश्क की शरारत है और दिल को झूमने पर मजबूर कर देने वाली बेहद खूबसूरत आवाजें हैं। एक महफिल हो, चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे हो, ऐसा सोचें आप, और साथ ही साथ किसी की आंखों में प्यार हो, किसी की बातों में नटखटपन हो और फिर बज उठे ये बेहद खूबसूरत नगमा जो आपके दिल में उतर जाए तो मत पूछिए मौसम क्या होगा, समय क्या होगा और अंदाज क्या होगा।

0: سرگم فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر لے کر اگلا پروگرام ارونیما. تب تک کے لیے نمسکار.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है. उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है. श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा साथ यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही. श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं. श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है. और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली.
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा. 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा. इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे. कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे. शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा. इसमें 5 राष्ट्रीय विषय, स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है. भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है. विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया. पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी. इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है. उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognised for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with PM of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda, will commemorate 8

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 6 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं उन तमाम बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हूं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है और हमें एक नई सोच के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में अगर कोई सच्चा हम सफर मिल जाए तो छोटी सी दुनिया भी पूरी कायनात जैसे लगने लगती है, और जब साथ में मोहब्बत हो, भरोसा हो और दिल से निकली हुई एक प्यारी सी दुआ हो तो फिर और क्या चाहिए।

कीजिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और महसूस कीजिए वो खूबसूरत एहसास जिसे आप दिल की गहराइयों से चाहते हैं और आप पसंद करते हैं। आपका अपना ये पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे से आज के सफर का आगाज करते हैं।

मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म नया दौर से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त जुड़े हैं आप अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। जिंदगी एक ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ अपने साथ एक नया एहसास लेकर आता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी थोड़ी मुश्किल, कभी कोई अपना साथ चलता है तो कभी कुछ खूबसूरत यादें ही हम सफर बन जाती हैं। लेकिन किसी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर गुजरता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए जो बीत गया उसे

शिकवा बनाकर नहीं, याद बनाकर रखिए, और जो आज आपके पास है उसे पूरे दिल से सजा लीजिए, क्योंकि जनाब वक्त की अपनी रवानी है, ये ठहरता ही नहीं, बस आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो क्यों ना इस सफर में हम भी हर पल को मुस्कुरा कर सलाम करें और आने वाले कल के लिए दिल में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी रोशनी और ढेर सारा प्यार रखें। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ, इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में फिल्म आपकी कसम का ये बहुत ही प्यारा नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है आरडी बर्मन साहब का। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये जिंदगी के फलसफे को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है ये नगमा।

जी हाँ, जिंदगी के सफर में जो मकाम गुजर जाते हैं वो शायद फिर लौट कर कभी नहीं आते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स हमसे दूर हो जाता है मगर उसकी यादें दिल से कभी दूर नहीं होती। वो भले ही हमसे कुछ सो दूर चला गया हो, हमेशा के लिए भी चला गया हो, लेकिन उसकी यादें हमारे इर्द गिर्द हमारे दिल में बसी रहती हैं और शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात है। फासले बढ़ सकते हैं मगर सच्ची भावनाओं की रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। इंतजार हमेशा सिर्फ किसी के लौटने का नहीं होता, कभी कभी इंतजार होता है उस एक खुशखबरी का, उस एक मुस्कान का या उस पल का जब जिंदगी फिर से कोई हसीन मोड़ ले ले। तो अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई उम्मीद, कोई दुआ या कोई ख्वाहिश बाकी है तो उसे संभाल कर जरूर रखें, क्योंकि उम्मीद का दिया छोटा जरूर होता है मगर अंधेरी रात में उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है। और इसी एहसास को बड़ी ही खूबसूरती से आवाज देते हैं आशा भोसले और भूपेंद्र, फिल्म एतबार के इस खूबसूरत यादगार नगमे के साथ। इस गीत को लिखा है हसन कमाल साहब ने और संगीत है बप्पी लहरी साहब का। तो आइए दिल की खिड़की जरा खोलिए, पुरानी यादों को मुस्कुराकर याद कीजिए और सुनिए मोहब्बत, इंतजार और उम्मीद से सजाइए बेहद खूबसूरत गीत, ये बेहद खूबसूरत कलाम। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कुछ इंतजार हमें कमजोर नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत और उम्मीद की गहराई से

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:37 और 38

सेकेंड महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। रात की इस तन्हाई में प्यार मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, जिंदगी में आने वाले मुश्किलात और उससे किस तरीके से डटकर मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़े। जब कोई साथी आपका साथ हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। इन तमाम मौजूदात पर हम और आप बातें भी कर रहे हैं और मिलकर इस सफर को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। और आप अपने पैगामात हमें ईमेल्स के ज़रिए भेज सकते हैं, और ईमेल के ज़रिए हमारा पैगामात पहुंचाने के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप हमें इस पर मेल कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम हम तक पहुंचाएं, तब तक हम आपके लिए जो बेहद खूबसूरत चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नाम या पहचान की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे पर एतबार हो तो रिश्ता खुद ब खुद खूबसूरत बन जाता है। कहा यह भी जाता है कि वादे शब्दों से नहीं, उन्हें निभाने से खूबसूरत बनते हैं। मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थामे रखना, खुशियों में दिल खोलकर साथ मुस्कराना और हर हाल में अपने रिश्तों की कदर करना, यही तो सच्ची मोहब्बत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर हम किसी को एक चीज दे सकते हैं तो वो है भरोसा। क्योंकि भरोसा वो दौलत है जो रिश्ते को वक्त के साथ और भी मजबूत बनाते हैं। तो आज जरा उन लोगों को याद कीजिए जिनसे आपने कभी कोई वादा किया था, और अगर मुमकिन हो तो उस वादे को फिर से दिल में ताजा कीजिए। आखिर रिश्तों की असली खूबसूरती तो साथ होने में ही है ना, साथ निभाने में ही है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आगे बढ़ेंगे अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में, और इसी खूबसूरत एहसास को अपनी आवाज में पिरो रहे हैं किशोर कुमार साहब और लता जी फिल्म कसमे वादे के इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे लिखा है गुलशन बहारा ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा है हम सब के प्यारे आरडी बर्मन साहब।

मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुकेश साहब की बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज यकीनन हम सबके जहन में कहीं ना कहीं हमेशा के लिए बस गई है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल है अरुणिमा की, और अब तमाम लोगों के पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे लेकिन इस अगले नगमे के बाद। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा पल आता है जो बहुत साधारण होते हुए भी दिल में एक खास जगह बना लेता है। किसी अपने को देखना, उसकी मुस्कुराहट महसूस करना और अचानक दिल में एक खूबसूरत सा ख्याल आ जाना, शायद जिंदगी की असली खूबसूरती भी इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छुपी है। हम बड़ी खुशियों की तलाश में अक्सर उन छोटी नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हर रोज़ हमारे आसपास होती हैं। एक प्यारी मुस्कान, किसी अपने की आवाज़, साथ बैठकर की गई छोटी छोटी सी बातें।

तो आज जरा ठहरिए, अपने आसपास के लोगों को महसूस कीजिए और उन रिश्तों के लिए शुक्रगुजार रहिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए जो आपकी जिंदगी को मायने देते हैं। क्योंकि खुशी हमेशा किसी बड़ी मंजिल पर नहीं मिलती, कभी कभी वो रास्ते में ही मिल जाती हैं, किसी की आंखों में, किसी की बातों में और किसी खूबसूरत मुलाकात में। और ऐसे ही एहसासात हर रोज हम कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं, महसूस करते हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है, नगमा कह ले या गलाम कह ले, जो आज के लिए बेहद खूबसूरत है। जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी की बहुत ही प्यारी आवाज में जिसे लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और संगीत है कुलदीप सिंह साहब का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: तुम।
1: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तू घना साया। बेहद खूबसूरत आवाज जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी की। अब तमाम लोगों के पैगाम हम तक पहुंचे हैं, वक्त है कि हम उन्हें भी शामिल करते हुए आगे बढ़े। तो हमारे पास जो पैगाम आया है वो आया है अरविंद साहब हमसे जुड़े हैं, सुशांत प्रिया हमसे जुड़ी हैं और फहीम साहब हमसे जुड़े हुए हैं, साथ में किशन जी हैं जो जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम इन सबको बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है और साथ ही साथ डॉक्टर कुंवर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। और एक और पैगाम हम तक पहुंचा है पटना से, नीरज कुमार गुप्ता जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बेहद खूबसूरत पैगाम हम तक पहुँचाने के लिए। इसी के साथ आज के इस अरुणिमा को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद मैं एक बार फिर आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी, जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बेहद खूबसूरत बातें होंगी और किस तरीके से जिंदगी को हम आगे बढ़ाएं उसके बारे में भी हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी 29 सितम्बर तक चलेगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शक, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार देश हैं। करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल दिसंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20

0: ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। श्री जॉर्ज ने सत्र को संबोधित करते हुए विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। ये सत्र विकास के अधिकार संबंधी घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी एक कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 30% से अधिक नहीं होगी जिन्हें इतालवी भाषा का बहुत कम ज्ञान है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि नियमों का उद्देश्य बच्चों को समाज में बेहतर तरीके से जोड़ना है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरला, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate, MDR, on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The Ministry of Health and Family Welfare has said Arogya Manthan 2026 will also witness the launch of a number of initiatives aimed at further strengthening India's digital health and health assurance ecosystem. Education Minister Pralhad Joshi will inaugurate the Seva First Innovation Challenge in Bengaluru today. The Education Ministry said the initiative will encourage young people to identify problems they see in their communities and develop solutions that can be tested, improved, and

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। नई सुबह नई उम्मीदें और एक नया दिन यानी जिंदगी ने हमें फिर एक बार बेहतरीन शुरुआत का मौका दिया है। हर सुबह अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है, कल चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो आज की सुबह नई है और नई सुबह में हम नए नजरिए के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जो रास्ते कल बंद नजर आ रहे थे हो सकता है आज उनमें कोई नया रास्ता दिखाई दे। बस जरूरत है थोड़े से हौसले थोड़े से सब्र और एक खूबसूरत सी उम्मीद की। और जब राह मुश्किल लगे तो दिल से एक दुआ निकलती है, ऐ खुदा मुश्किलों को आसान कर दे, ऐ ईश्वर हमारे राह को आसान कर दे, हमारे इरादे को मजबूत कर दे और हमारे कदमों को सही रास्ता दिखा दे। और हम जो भी काम शुरू करते हैं उसे खुदा उसे ईश्वर के नाम से करते हैं और इसीलिए तो हम हर दिन का आगाज

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन का आगाज करते हैं, हम हर काम उसी खुदा उसी ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है भोर सुहानी की, और इस नई सुबह में मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर है तो समय उसका सबसे खामोश हम सफर है। शायद आप भी ऐसा ही मानेंगे। वो न रुकता है न पीछे लौटता है, बस हमें हर दिन कुछ नया सिखाता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। कभी समय के दर्पण में हमें अपनी पुरानी यादें दिखाई देती हैं, कुछ खुशियां कुछ शिकवे कुछ अधूरे ख्वाब, लेकिन गुजरे हुए कल का मकसद हमें रोकना नहीं बल्कि बेहतर आज की तरफ ले जाना है। इसीलिए जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दीजिए, गुजर जाने दीजिए। जो आज मिला है उसके कदर कीजिए, और जो कल आने वाला है उसके लिए दिल में उम्मीद और हौसला रखिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों से होकते हुए गुजरती है जो हमें रास्ते में मिलती है। इसीलिए हर लम्हे को पूरे दिल से पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई से जिए। एक प्यारी सी बात भी याद रखिए, वक्त बदलता रहता है और यही बदलाव जिंदगी को नया अर्थ देता है। मुश्किल दौर हमेशा नहीं रहता, जैसे अच्छी सुबह भी हर रात के बाद आती है, तो आज अपने अतीत से सीखिए, वर्तमान को जी भर कर जिए और भविष्य का खैर मकदम करते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। ऐसा ही पैगाम अगला नगमा लेकर आया है, सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ और आशा भोसले जी उनका साथ दे रही हैं इस बेहद खूबसूरत नगमे में।

समय के दर्पण में आओ मिलजुल कर एक सपना देखें। सचमुच मिलजुल करके ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों कहते हैं ना, हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है जैसी चीजों को हम अपने दिल और दिमाग में जगह देते हैं। तो क्यों ना आज से एक छोटी सी कोशिश की जाए